साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी ने बड़े प्यार दे नाल हजूर दी इलाही गुरबाणी दा रस पिना कीर्तन सरवण कीता है जी। अज उस अकाल पुरख वाहगुरु जी दी कृपा दा सदका दशमेश पिता धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हां ने अपना सब कुछ देश कौम तो कुर्बान कर दिता, उस प्यारे गुरुदेव दे पावन पवित्र आगमन पुरब नूं आप जी मना रहे हो। जिवें जिस दिन ए पुरब सी उदन भी हजूर दे जीवन दे कुछ कौतक जो बाला प्रीतम ने बाल अवस्था विच चोज रचाए उन्हां दी विचार आपां कर चुके हैं। आओ साध संगत जी, जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी का आगमन पुरब 25 तरीक नूं आपां मनाया है, उथे 22 दिसंबर नूं मेरे हजूर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे वड्डे साहिबजादियां दा शहीदी दिवस सी। आओ चमकौर गढ़ी दा साका उस इतिहास नूं गुरु कृपा नाल आपां ने वाचना है। साध संगत आप मेहरामत करो तां जो उस प्यारे सतगुरु दे इस जीवन नूं हजूर दे इस अलोक कारनामे नूं गुरु कलगी वाले दा एह वी इक बचित्र ही नाटक सी जिहड़ा अजे तक किसे ने खेडिया ना। किन्नी हैरानी पैदा करन वाली एह घटना है। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप मेहरामत करो, आप ही अंदर दी एकाग्रता बख्श के अपने इस पावन पवित्र इतिहास दी विचार करा लो। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी, जदों आपां हजूर दे पावन पवित्र जीवन नूं पढ़ने हां ते उन्हां दी पावन पवित्र बाणी दे आधार ते हजूर ने अपनी बाणी विच जिवें आपां बचित्र नाटक विच बचन सरवण कर रहे सां कि मेरे आउण दा प्रयोजन की है, ते साहिब ने इक्को सवैये अंदर इस पूरी घटना नूं अंकित कर दिता, ते साहिब ने बचन कीते दशमेश सतगुरु ने कि हम ए काज जगत मोह आए, मैं इस काज लिए संसार ते इस जगत ते आया, धर्म हेत गुरदेव पठाए। पठाए दा अर्थ हुंदा भेजा गया। हजूर कह रहे ने मैं कुछ कम करना आया, ते उस गुरदेव ने उस अकाल पुरख वाहगुरु ने मैनू इस काज वास्ते इस संसार ते भेजिया। हम ए काज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। की काज है साहब? कहिंदे ने जहां तहां तै धर्म चलाए। साहब जी बचन करदे ने आपां सवैया ए सरवण भी कीता, एक तां पंक्ति ए आउंदी है जहां तहां तै धर्म चलाए, कबुद्ध करन ते लोक हटाए, ते इथे बचने जहां तहां तै धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पिछारो, यही काज धरा हम जनमंग, समझ लियो साधु सा मनमंग, कास वास्ते धर्म चलावन, संत उभारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन, धर्म नू चलान लई, परमेश्वर दी बंदगी करन वालियां नू उभारन वास्ते। ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे ने हे साधु जनो, एक गल ध्यान नाल इस नू समझ लवो कि धर्म चलावन, संत उभारन, दुष्ट सबन को मूल उपारन, ते जेड़े जालम बिरती वाले लोग ने उन्हां दुष्टां दी मूल दर ते मैं जड़ पटन वास्ते आया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी दे जीवन नूं पढ़ने आ ते बड़े प्यारे कुछ कु बचन प्रोफेसर प्यारा सिंह पद्म ने कीते ने। ओ कहिंदा तीन किस्म दे संसार विच आम तौर ते इंसान पैदा हुंदे ने।

कवन वढाई कह सको बेअंत गुणिता कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर्शरिता।

नानक होशे ते सच गुरपुरै मेरी राख लई गुरपुरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मह दीनो जन्म जन्म की मैल गई।

सतगुरु तेनू छड़ के नहीं, ते सतगुरु ने बचन किया बुढ़िया जा मैं तेरे नाल अज बचन करना वा, तेरे तो ओले कदे ना होसा, मैं किसे भी रूह विच होवांगा पर तेनू पता होवेगा मैं किथे टिकिया होया वा। पंक्ति बड़ी रमज भरपूर है, तेरे तो बुढ़िया ओले कदे ना होसा। बाबा बुढ़ा जी नमस्कार करके पिछा आ गए, ते जिदन भाई लैणे नू गुरगद्दी दिती, लैणे तो गुरु अंगद बने, पहली नमस्कार गुरु नानक साहब ने कीती। उस वक्त माता सुलखनी भी कोल आई, उन्हें एक शब्द कहा सी, दाता लै गद्दी तो सेवक नू मिल गई पर पुत्रां दा की बनेगा, इन्हां दा प्रसाद पानी। ते गुरु साहब ने जेड़े बचन कह कवि संतोख सिंह ने गुरु प्रताप नानक प्रकाश भी दिते ने, कह लगे सुलखनीए आ गुरु दा दर ऐसे ही, एदे दर ते बैठे हुए कुत्तियां दे पैरां विच भी करामातां होणगियां, ए ते मेरे पुत्र ने, इन्हां दी क्यों नहीं लोग सुनगे।

पोहं पातिक बिना सह गुर अमरदास परसी है सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसी है ध्यान लइए पौ मुकह गुर अमरदास परसी है अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तो रह जा सुमंत्र मान वैल है जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कन हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

परम सम्मान योग जुग जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जिया ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी होरां पासों सरवण कीतियां ने। कल दा दिन जो बतीत होया है, कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब से ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नू आपां अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदों आपां इतिहास नू गुरमत नू पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलक्षण सानू जिहड़ी नजर आउंदी है, इत्थे गुरु दी कृपा ते निर्भर करदा है। 7 साल दा बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल दी उम्र विच बंदे नू सूझ कोई नहीं, शब्द वरतदे ने ए सत्तरिया बत्तरिया गया है, 12 साल गागर ढो के 72 साल दा बजुर्ग भी सिख तो गुरु बन सकदा है। यही विलक्षणता कि इत्थे 5 साल ते 3 महीने की बाल उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी वह भी गुरु बन सकते ने, ते कृपा गुरु करे तो 72 साल का बजुर्ग भी गुरु बन सकता है। आओ गुरु अमरदास जी दे पावन पवित्र इतिहास की और बाणी की विचार आपने करनी है, जड़ा अज का दिन गुरगद्दी पुरब आप मना रहे हैं। इस दी विचार इस दिन दे संबंध विच गुरु कृपा नाल आपां विचारने, कृपा करके जितने भी बैठे हो ना एकाग्रता जरूर बख्शिया जे। कोशिश करो इस खिंडे हुए मन नू गुरु अमरदास जी दे चरणा विच अज टिका दईए। जे तां बुद्धि तारक केवल तर्क करन वाली नाल सुणांगे ते याद रखना वो कहा होया केवल तर्क दी बिरती वाला लगेगा, ते जदों प्रतख गुरु नू हाजर नाजर जान गुरु के बचन सरवण करांगे ते सतगुरु गुरु अमरदास दी कृपा वरसेगी। विचार आरंभन तो पहला सतगुरु की बख्शिश कीती हुई गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाबा अमरदास जी का जन्म पिंड बासर के जो अजकल जिला अमृतसर के अंदर है, सन 1479 नू बाबा तेज भान जी दे ग्रह विखे हुए। बाबा अमरदास जी गुरु नानक साहब जी तो उम्र करके केवल 10 साल छोटे ने। गुरु नानक साहब जी का आगमन सतगुरु का प्रकाश सन 1469 नू राय भोए दी तलवंडी ते होया गुरु नानक साहब जी का, ते बाबा अमरदास जी का प्रकाश इन्हों का जन्म आगमन शब्द वरत लईए कि पिंड बासर के 1479 नू होया। 10 साल बाबा अमरदास सतगुरु गुरु नानक साहब तो छोटे ने। बाबा अमरदास जी दे पिता दा नाम तेज पान है। बाबा अमरदास जी 4 भरा ने ते अमरदास जी सब तो वड्डे ने।
मैं शब्द वरत्या बाबा इस करके वरत रहा, अजे वह गुरगद्दी ते विराजमान नहीं। बाबा अमरदास सब तो वड्डे ने, छोटे तीन भरा ने, ते इथों तक यह कारोबार अपना जिमीदारा भी पिंड विच करदे सन। उस तो इलावा महिमा प्रकाश विच तां इह भी लिखिया रेशम दे कपड़े दा वपार करदे ने। कहण तो मुराद वपार भी करदे ने, दुकानदारी भी करदे ने, ते बाबा अमरदास जी का पूरा परिवार जिहड़ा है जिमीदारा भी करदा है। बाबा अमरदास जी दे संतान इन्हां दे घर दो पुत्र ते दो पुत्रियां पैदा होईयां। वड्डे दा नाम सी बाबा मोहन जी, छोटे पुत्र दा नां है बाबा मोहरी जी, वड्डी पुत्री दा नां है बीबी दानी जी, छोटी बच्ची दा नां है बीबी भानी जी। बीबी दानी जी दा आनंद कारज होया भाई रामा जी दे नाल, ते बीबी भानी जी दी शादी उन्हां दा ब्याह उन्हां दा आनंद कारज होया भाई जेठे दे नाल, जिहड़े बाद विच गुरु रामदास बने। बाबा अमरदास अपने पिंड विच टिके ने, पिता इन्हां दे भी दया दी धर्म दी मूर्त ने, ते इन्हां दे मन विच एक फुरना उठदा है जिहड़ा मन दा टिकाओ वे। जिहड़े असी प्रभु तो कई जन्मां दे विछड़े हां, कोई तरीका है कि अंदर दी भटकना दूर हो जाए ते उस प्यारे प्रभु जी दे चरणां विच लीन हो जाइए। ते इसे गल नूं मुख रख के बाबा अमरदास जी ने एक टीचा मिथिया है कि हर साल मैं गंगा ते जाके इशनान करना है, दान पुन करना है, आए गए दी सेवा करनी है। हो सकता है कि गंगा दा इशनान करन दे नाल मेरे इस मन नूं टिकाओ मिल जाए, मेरा अंदर किते भटकनों बच जाए, मैं उस प्रभु दे चरणा विच लीन हो सकां। ते बाबा अमरदास एक दो साल नहीं, 19 वारी ओ तीर्थ इशनान करन गए ने। कईयां ने शब्द भी वरते है, खैर तीर्थ इशनान गंगा इशनान हर वार करन जांदे ने, ते महीनियां बद्दी समा लगदा है पिंड बासर के तो गंगा इशनान करना, ते जाना है जाके उत्थे दान पुन भी करना है। उत्थे बड़े आराम नाल गंगा दा इशनान करके साधुआं महापुरुषां दे कोल भी बहना है। ते अज 20वीं वार जदों बाबा अमरदास जी गंगा तो वापस पे आउंदे ने, ते रस्ते विच एक पिंड आया मेड़ा, जिसनूं पिंड मिठड़ा भी कहा जांदा है। इस पिंड दा एक बहुत ही स्याणा विद्वान पंडित है जिहड़ा ज्योतिष विद्या विच भी बहुत माहिर है, ते इन्हें अपने घर दे विच एक मानो सरां दा ढंग तरीके नाल मकान बनाया है कि जितने भी यात्री गंगा इशनान करन जान ते जां गंगा इशनान करके वापस आउंदे होण, उन्हां नूं जल पानी दी सेवा करनी, प्रसाद पानी उन्हां लई तैयार करना, ते रस्ते दी थकावट दूर कर ली, जितने दिन भी कोई रहना चाहे। ते ओ विद्वान पंडित अपने घर विच रखदा सी, ते यात्रियां दा एक सुभा सी कि ओदे घर विच दो चार दिन आराम करन तो बाद जान लग्या ओदी तली ते कुछ ना कुछ माया जरूर रख जांदे सन भी चलो ये बंदा सेवा करदा है। बाबा अमरदास अज यह भी उस पिंड विच पहुंचे ने, उस पंडित विद्वान दे घर अंदर ओदी सरां दे अंदर उन्हां ने बड़े आराम दे नाल जाके प्रसाद पानी छकिया। कह लगे गर्मी दे दिन सन, ते बाबा अमरदास जी ओदे घर तो बाहर निकल के ओदे लवाए हुए बाग दे अंदर जाके टिक गए, ते गर्मी अतदी पैंदी है। बाबा अमरदास उस रुख दी छां थले टिके ने, ते किन्ने इस पंडित दा नाम सी दुर्गो, सार सुत भिंबी गोद दा सी ए। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੇਟਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਖੀ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਤਲੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਦਮ ਦੇਖਿਆ, ते देख के सतगुरु के बाबा जी दे चरणा विच खलो गया। कहन लगा हे मना, मेरी विद्या कदी झूठी नहीं हो सकती, जे एदे चरणा दे अंदर पदम है ते एक गल ध्यान विच रखना, जां ते ए आउन वाले समय दे अंदर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा,
ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮ ਵਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਆਪਣੀ ਬਾਂਸੁਲੀ ਥੈਲੀ ਖੋਲੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੁਰਗੋ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਾਟ ਤੂੰ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਰਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੈਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈਣੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਰੇਖਾ ਰੇਖਾ ਫਲੇਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦਣ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਰੇਖਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਰੇਖਾ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗੀ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੁਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਦਮ ਪੜਿਆ ਪਦਮ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੁਰਗੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨੇ, ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਣੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਏ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਕੇ ਤੂੰ ਦਾਤ ਲਈ ਏ? ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪਣਾ? ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਖਿਰਦਾ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਏ? ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਰ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਗੁਰਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ।

गया, जवानी चली गई, हुण बुढ़ेपे ने तेरे ते आ के प्रभाव पाया। जे अजे तक भी गुरु वाला नहीं बनिया ते जदों ये जन्म चला गया फिर गुरु वाला किवें बने? अजे तक तू नगुरे, बस इन्ने शब्द कह गया कि तू अजे तक भी नगुरे। ते बाबे अमरदास नूं इन्नी सत वज गई, इहनूं चैन ना आया। ते कई वारी किसे बंदे दी छोटी जी गल भी अंदर इन्ना कु असर कर दीए, बंदा कितने समय लिए उस गल नूं सोचण लई मजबूर हो जांदा। कहण लगा अजे तक तू गुरु वाला नहीं, देख बुढ़ेपा आ गया। ते सतगुरु ने बाणी विच बचन भी बड़े प्यारे कहे, कहिंदे ने बंदे नूं इक आस हुंदी है साहब, कहिंदे ने जदों जन्म होया ना ते बचपन विच इक आस है, जे कुछ दिन खेडण दे ने, खाण पीण दे ने, ते अजे मेरे ते जवानी आउणी है। ते जवानी तो बाद इस मनुख नूं इक आस है कि पुत्तर धीआं वड्डे होए, अजे इन्हां दी कमाई नाल मैं सुख मानना, मेरे ते बुढ़ेपा आउणा है। ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने उस बंदे नूं मैं पुछ के देखा जिन्हें बचपन का समा जवानी दी इंतजार विच बतीत कीता, जवानी बुढ़ेपे दे आउण दे समय विच बतीत कर दिती, हुण बुढ़ेपे तो बाद की आस ला के बैठा की मिलेगा? ते पुछया सतगुरु तुसी दसो। कहन लगे मेरा ते उत्तर इको ही, फसल बीजिए, एक आस है जे जमीन विचों निकलनी है, अजे कच्ची कोमल फसल ने निकलना है। जेड़ी फसल जमीन विचों निकल आवे, एक आस है अजे ने डटरी होना है, अजे ने कच्ची अजे पक्की होना है। ते जेड़ी फसल पक जाए ओदे ते इको आस है, अज जा कल जिमीदार आवेगा, अपने मजदूरां नूं लिया के दातरियां नाल कट के इन्हां नूं घर लै जाए। कहन लगे सजना तू तां परमेश्वर दी फसल है, ध्यान रखी कि ए रब दी मर्जी है। बचपन ओ कच्ची फसल ही, जवानी डडरी फसल ही, ते जदों केस कालियां तो चिट्टे हो गए उदों फसल पक चुकी है, उदों तां सिर्फ इको ही आस है, अज जां कल मौत जिमीदार ने आउणा है, उहने इस फसल नूं कट के अपने नाल लै जाणा। पक्की होई फसल केवल कत्ती जांदी है, पक्की तो बाद की करांगे। हजूर ने बाणी विच क्या हरी नाहे ना डडरी, ए दरते जे हरी फसल नहीं कट्टी गई ते डडरी दी आस ना करी, हो सकदा डडरी तो पहला कोई कट के लै जाए। हरी नाहे ना डडरी, पक्की वड्डन हार, लै लै दात पगोतिया, लावे कर तैयार, जा हुक्म होवा किसान दा ता लुण मिणिया खितार। जितन रब ने हुक्म कर दिता ओदू बाद इस फसल नू वाढी जरूर पए। बाबा अमरदास नू सिर्फ इन्नी कु गल ठोकर मार गई कि मना तू गुरु तो विछड़े, तू रब तो विछड़े। ते मैं कई वारी अर्ज करना हुना जदों ए महसूस अंदर हो जाए ना बाणी पढ़दे आ कि मैं रब तो विछड़िया वा, मैं गुरु तो विछड़िया वा, ते एक आस करियो कि परमार्थ दा एक कदम आपां ने पट लिया। दुनिया नूं तां ए भी पता नहीं असीं रब तो विछड़िया कि नहीं, लोकां नूं तां ए भी समझ नहीं मेरा गुरु की ते मैं गुरु तो विछड़िया वा। जिस बंदे नूं इन्नी समझ पै जाए ठोकर वज के कि मैं अजे गुरु नाल नहीं जुड़िया, जिस बंदे नूं रोग दा पता लग गया ओ वैद नूं भी जरूर लभेगा, जिस बंदे नूं ए ही पता नहीं मैं रोगी हां उहने वैद कोल जाके करना की। बाबे अमरदास नूं इन्नी कुछ समझ पै गई तू प्रभु तो विछड़िया, ते गुरु कृपा करे हर बंदे नूं इह समझ पै जाए। कबीर साहब ने बाणी विच इक पवित्र बचन कहा, कहिंदे ने जदों शाम पैंदी है ना, उहनां ने उस वक्त दे समें नूं मुख रख के बचन उचारिया, कहिंदे ने शाम पैंदी है वपारी भी अपने टिकाणे ते रात नूं आराम करदा, तुरन वाला राही भी किसे सरां विच रुक जांदा, जिमीदार भी शाम नूं थक के घर आ के टिक जांदा, दुकानदार चाकरी करन वाले भी ज्यादातर रात नूं घर आ टिकदे ने, पर कबीर साहब कहिंदे ने रात नूं सारे आराम करदे ने, पर एक आवाज रात नूं मेरे कन्नां विच गूंजदी है, ते सोचना वा ए कौन है जिन्हूं रात भी आराम नहीं, ए रात भी उच्ची उच्ची पुकारदा। ते कहिंदे ने जदों इस आवाज दी छेद नूं मैं गया ते की देखिया, एक चकवी बड़ी उच्ची उच्ची पुकारदी पई है। पता नहीं कुदरत दा एक नेम है, जदों शाम पैंदी है चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै जांदा है। विद्वान सज्जना ने बाणी विच इहदियां बड़ियां उदाहरणां ने, दरियावां दे किनारियां ते

0: सम्मान योग चवर तखत दे मालक परमेश्वर दा खिरदा स्वरूप सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभाए मान होए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों वडभागी हो इलाही गुरबाणी दे कीर्तन नाल सतगुरु नानक देव बाबा जी महाराज उन्हां दी बख्शिश कृपालता लै रहे सी। आओ जितने को सूझ धन गुरु ग्रंथ साहिब जी मेहर करके बख्शनगे गुरु बाबा जी दे पवित्र जीवन और गुरबाणी दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभन तो पहला कृपा करके एकाग्रता बख्शो, बच्चियां नूं भी चुप करा के कृपा करके एकाग्रता दा दान बख्शिया जे। गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने शब्द सरवण किया है बाबा मन मतवारो नाम रस पीवै सहज रंग रच रहया अहमिस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया। ए शब्द दी रहाओ दी तुक सी। पहलियां पंक्तियां सन गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै कर करनी कस पाइयै पाठी भवन प्रेम का पोचा इत रस अमेओ चुआइयै। ते इस शब्द दे अखीर दी तुक सी कि गुरु नानक साहब एक जोगी नूं संबोधन कर रहे हैं। कहो नानक सुन भर थर जोगी। इहदा मतलब है शब्द किसे जोगी नूं संबोधन करके उच्चारण किया पर चेते रखना यह शब्द केवल उस समय तक उस जोगी दे जीवन तक सीमित नहीं सी। ए शब्द अज भी गुरु के सिखा नूं एक चेतावनी दिंदा है ते नाम रस नाल जुड़न की प्रेरणा दे रहा है। शब्द असा सुने बाबा नानक जी नूं जोगी मिले है। इन्हें गल कीती है लिव दी गल कीती है अनहद शब्द दी। ते जोगियां दे मत मुताबक उन्होंने प्याला भर के नशे का पेश किया शराब का पेश किया। ते बाबा जी पुछदे ने ए की कहन लगे एक वारी पी लईए ते परत के दिन चढ़े तक एदा नशा उतरदा नहीं ते इन्नी टेक के समाधि लाई दी है कि शरीर नूं थकावट भी महसूस नहीं हुंदी। ते बाबा जी कहन लगे भलियो ए प्यार किवें कीता जे ध्यान देना। कह लगे भांडे विच पानी पाया सी पानी पा के विच गुड़ पाया गुड़ दे विच किकर दे छक पाए ने अमवे दे फुल पाए ने। पहला एक कच्ची एक कच्चा रस तैयार होया परत के अग दी भट्ठी ते भांडे नूं रखिया ते इहदे चो गिरदे आपां भांडे उपर होर बथल फिट कीता उहदे विच नाली लाईए ते भांडे उपर जिहड़ा बथल फिट किया होर भांडा फिट किया ते उहदे चार चुफेरे असीं मिट्टी का पोचा फेरिया ते थल्लो अग बाली ते जिहड़ा इहदा अरक निकलिया इहनूं असीं रस कहिंदे आ। एक वारी पी लईए ते रात भर इहदा नशा उतरदा नहीं। इशारा सी शराब वल। बाबा जी कहन लगे शराब का नशा नहीं और रस की होए जेड़ा शाम नूं पीता होवे ते सवेरे उतर जाए। ते कहन लगे मैं उस नाम रस दे प्याले नूं पी चुका हां ते इहो जिहा आनंद अंदर बन गया है कि चेते रखो ओहदा नशा ओहदा सरूर ओहदा रस कदी भी उतरदा नहीं। ते जोगियां ने पुछया ए रस किवें तैयार हुंदा है ते बाबा जी कहन लगे जोगियो गुड़ कर ज्ञान परमेश्वर दे बख्शे हुए ज्ञान नू गुण बनाया ध्यान कर पावे ओदे नाम विच ध्यान जोड़ना मैं इनू अमवे दे फुल बनाया कर करनी कस पाईए ते उच्चे आचरण नू किकर दे सत बना दिता है पाठी भवन आ शरीर नू पक्षी बना दिता इस मोह दी मोह नू मैं साड़न तुरिया वो पाठी भवन तुसी मिट्टी का पोचा देंदे हो प्रेम का पोचा ते एदे विचो शराब नहीं एक रस अमेओ चुवाईया एदे विचो अमृत दिया बूंदा डिगदिया एक रस अमेओ चुवाईया कह लगे फिर बाबा हे जोगी मन मत वारो मन मस्त हो गया नाम रस पीवे सहज रंग रस रहा एमस बनी प्रेम में लागी शब्द अनाहत गया एमस का अर्थ हुंदा दिन ते रात एवो जिहा सुरूर ओ विचार है कि मेरे अपने अंदर ही ओ शब्द सुनाई दे रही ओ शब्द आप जी ने सरवण किया ते जे आप कह दईए भी ए कले जोगी वास्ते सी ते ध्यान रखो गुरु के सिखो बाबा नानक जी ने इस शब्द विच कले जोगी नू नहीं हर प्राणी मात्र नू कह जिस नशे पिछे तू जीवन बर्बाद कर रहे है इस नशे ने ना लोक सवार नहीं ना परलोक सवार नहीं ते कई बारी कोई सज्जन कहिंदे ने कि गुरु ग्रंथ साहिब विच शराब दे मुतल्लक कुछ बचन कीते ने हां बाबा अमरदास जी एक बचन करदे ने कहिंदे ने मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए जित पीता मत दूर होए बरल पड़ा विच आए अपना पराया ना पछाणी खसमो धक्के खाए जिदे तीन नाल अपने पराए की पछाण नहीं ओहो जिहे बंदे नू तां रब की दरगाह विचों भी धक्के पैंदे हुण गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी भगत रविदास जी का एक शब्द हुंदा नागर जना मेरी जात बख्यात चमारई उस शब्द विच इक तोके कहिंदे दुनिया ने सब तो पवित्र गंगा नदी नू मन्निया हिंदुस्तान दे लोगां नू पर भगत रविदास कहन लगे जेकर गंगा दियां लहरां दे पानी दी भी शराब कोई कढ लै ते रब दी बंदगी करन वाला कदी ओहदे वल झाकदा भी उहनां दा बचन है सुरसरी सललकृत बारनी रे के जेकर सुरसरी दा अर्थ है तू गंगा दियां लहरां दी शराब बना लै सलल दा अर्थ लहर सुरसरी सललकृत बारनी रे पर नाल कह दिता संत जन करत नहीं पावन सतगुरु गुरु साहिब जी ने ओ रस दिता जेड़ा रस नाम दा कदी उतरना नहीं खैर गुरु नानक साहिब महाराज जी दा पवित्र इतिहास आपां कल विचार कीती सी गुरु नानक बाबा जी ने सज्जन ठग तो सज्जन भाई बना दिता है अगे लोकां नू ठगदा सी अज एहो जिहा सज्जन बना दिता नाम दा व्यापारी बन गया गुरु नानक साहिब महाराज सज्जन तो बाद हर द्वार दी धरती ते पहुंचे ने इत्थे मेरे दाता जी ने कुछ एहो जिहा कौतक वरताए जेड़ी कई मुद्दतां तो उन्हां दी मनौत सी एक परंपरा बनी हुंदी सी ते पांडे ने मर्यादा बनाई सी ते गुरु नानक दे उस दलील ते नाम दी बरकत सामने कोई खलो ना सकिया हर द्वार पहुंचे ने अजे सूरज दी टिक्की निकल रही है ते लोग गंगा विच इशनान तय करदे ने ओ लोग तन नूं तां धो रहे ने पर मन उन्हां दा दसी पासी धामदा पिया तन धुपदा पिया पर मन धामदा है मन धुपदा नहीं मैं बेनती की धामदा दर से दौड़दा पे पिंडे ते पानी पै रहा है पर मन ते उस पानी का असर नहीं ते कुछ कूने पानी दियां बुकां भरिया ने ते सूरज वल पानी पै सकदे ने ते बाबा नानक जी कहिंदे ने मरदानिया तू खलो किनारे ते आ देख पानी पै सिंजदे ने चढ़दे नू आपां वी अपने घर दा कोई सोचिए बाबा नानक जी पानी विच प्रवेश कीता ते लेंदे नू पानी झटना शुरू कर दिता पानी सिंजन लगे ते जदों बाबा नानक जी इकले लेंदे नू पानी सिंजदे पए ने हुण इन्नी भीड़ सी कहन लगे देखो आ बंदा कौन है ए हिंदू है ते जे हिंदू है ते चढ़दे नू पानी छड़ के लेंदे नू पानी दे रहा है। ते पंडे कोल आए कह लगे भलिया तू पहली बारी इत्थे आए है? कह लगे हां। फिर किन्ने तेनू पता नहीं पानी चढ़दे नू दईदा लेंदे नू नहीं? सतगुरु बाबा जी किन्ने चढ़दे नू क्यों? कह लगे कुछ तां सूरज नू पानी देंदे ने, कुछ अपने मर चुके पितरां नू पानी पै देंदे ने। बाबा जी कहन लगे पितर किन्ने कु दूर ने? उन्हां ने करोड़ां कोह दी गिनती कीती ते बाबा नानक जी फिर पानी झटन लग पै। ते उन्हां कहा हे बाबा असी तेरे सवाल दा उत्तर दे दिता, तुसी पुछिया असी पानी किन्नू देने आ? असी सूरज ते पितरां नू पानी दे रहे आ ते तुसी पानी किधर दे रहे हो? बाबा नानक जी कहन लगे मेरी धरती है लेंदे नू, जमीन विच फसल बीजीए। ते कई वारी साडे वीर कहंदे ने बाबा जी ने कहा मेरी करतारपुर जेड़ी खेती सुकदी पई है। नहीं प्यारे अजे करतारपुर शहर बदा भी नहीं सी, करतारपुर ते सब तो अखीर विच बजा। कहन लगे लेंदे नू मेरी धरती विच बीज पिया फसल सुक रही है, मैं चाहना वा पानी चढ़ चढ़ के उस फसल नू भरपूर कर दिया। सारे हस के कहन लगे देखो एनी अकल नहीं, आ गंगा विचो पानी निकल के तेरे पैरा विच फिर परत के रुड़ के वापस आंदा है, एने को दूर पंजाब की धरती ते पानी पहुंचेगा? जा तेरी उस धरती ते जिथे तू फसल बीजी पानी अपड़ जाएगा? बाबा जी कहन लगे पंडा जी मैं ता अज पानी सिंजन आया, आ तुहानू किन्ना कु चिर हो गया पानी चढ़दे नू सिंजने आ? कह लगे ते ता हर साल ही लोकी सिंजदे ने, जदों कोई यात्री आए ते पानी सिंजदा है। साहब कह लगे पंडित जी जे तुहाडा सिंजिया होया पानी करोड़ां को दूर पितरां तक ते सूरी तक पहुंच सकदा है, ओ साडी धरती ते सैकड़े कुआं तेरे कि साडा पानी उस धरती ते नहीं पहुंचेगा? जे तेरा सैकड़े कुआं दूर हजार करोड़ां कुआं दूर ते साडा सैकड़े कुआं दूर नहीं जांदा? लोग हैरान हो गए, कहन लगे अज तक किसी ने सोचे ही नहीं, वाकई जेकर पानी पितरां तक पहुंच जांदा है ते ए पानी इस धरती ते नहीं पहुंच सकदा? ते सारे कोल आ गए, कहन लगे बाबा गल तां तेरी बिल्कुल दुरुस्त है, पानी पितरां तक पहुंचदा नहीं। ते चेते रखियो पितरां दा असी अर्थ करने आ जेड़े मर चुके प्राणी ने, जेड़े बजुर्ग चढ़ाई कर चुके ने। पर अज बाबा जी ने एक किवाड़ खोलिया उन्हां लोगां दा जेड़े जिउंदे जी तां बापू दे मुंह विच कुट पानी दा नहीं पाया, जिन्हां ने जिउंदे जी मां बाप नूं रोटी नहीं कदी अदब नाल दित्ती ते मरण तों बाद गंगा विच खलो के चढ़दे नूं पानी सट के कहिंदे ने पितरां नूं पानी देने आ। गुरु ग्रंथ साहिब दी विचारधारा ने उन्हां लोकां नूं झंझोड़िया। पहली गल इत्थे दो गल्लां ने, एक तीर्थ ते नहाउण वाले ते दूजे पितरां नूं पूजण वाले। आपां भाई साहिब भाई गुरदास जी उन्हां तों पुछिए भी जिहड़े लोक जिउंदे जी मां बाप दा अदब नहीं करदे ते मरण तों बाद पितरां नूं पाणी देंदे ने, भाई गुरदास जी तुहाडे कोल गुरु नानक जी दे घर दी विचारधारा दसो, उन्हां बारे तुहाडा की ख्याल? भाई गुरदास जी दी वार नंबर 37 ते पौड़ी नंबर 12 ते 13 ध्यान रखना। भाई गुरदास जी कहिंदे ने ऐ मनुख ए माया किन्नी प्रभावशाली है, जिदन तेरा जन्म होया रब दा भाणा उदन वापरिया। वैसे असी भाणा अखर जेड़ा है ना इनू दुखांत नाल जोड़ दिता है, ध्यान देना। असी कई बारी भाणे अखर नूं दुखांत नाल जोड़ने आ, कोई काम बिगड़ जाए, कोई मर जाए, किसे नूं सट लगदा है, असी कहने भाणा वापरिया है। मौत होवे ते कहने भाणा वापरिया है, ते जदों जन्म होवे ते कोई नहीं जे कहिंदा इन्हां दे घर रब दा भाणा वापरिया है। असल भी जिदन बच्चा जमदा उदन भी भाणा ही वापरदा है। आ इक शब्द हुंदा है आनंद साहिब विच, जां तिस भाणा तां जमिया परिवार भला पाया। किन्ने जां तिस भाणा तां जमिया, जिदन तेनू रब जी पाया उदन जीव दा जन्म होया। ध्यान रखना कुछ अखर ऐसे ने जिवें हुण एक अखर है जलूस, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੂਸ ਅੱਖਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਲੋ ਤੋਂ ਜਲੂਸ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ ਜਲੂਸ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬਕਣਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਣਾ ਅੱਖਰ ਬਕਵਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਕਣਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸ਼ੋਂ ਦੇਦਾ ਜੋਰ ਚਰਨ ਗਹੂੰ, ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਬਕੋ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂ, ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜਾਂ। ਚਰਨ ਗਹੂੰ ਬਕੂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ, ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਕੋਰ ਅਕੋਰ ਦਰ ਤੇ ਭੇਟਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੋ ਉਦਨ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਵਿਚੋਂ ਗਰਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਲਿਆ ਕੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰਲੇ ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮਿਆ ਸੈ ਉਦਨ ਸਾਈ ਵਿਛਰਿਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨੀ ਟੁੱਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮਣ ਕਾਮਣੇ ਆਰੀਏ, ਕੀਤੋ ਕਾਮਣ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਨੀ ਤੂਣੇ ਹਾਰੀਏ ਇਸਤਰੀਏ। ਤੂੰ ਕਾਮਣ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਟੂਣਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਮੇ ਸਾਈ ਵਿਛਰਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਗਾਇਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ
1: ਸਤਨਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜੋੜੇ
2: ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੁਰਖ

जाता है ना पाता है ना ताता है ना माता है, ओनू नमस्कार करी ना शत्र है ना मित्र है। सतगुरु ने कहा इनू नमस्कार जे करदा जाएगा ना, मैं वह संखेप भी चलना पे हूं। हजूर ने मेहर की कह लगे नमस्कार करने वालियां दी काल थाए पैंदी। कल गुरमुखा ने अष्टांग की गल की थी, कोमल साहब ने बहुत सुनी के अष्टांग नमस्तक का मतलब की है। असि पढ़ने वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय, पिछली बार की सी अष्टांग। आपा पढ़ने दंडौत बंधन अनक बार, दंडौत दंडौत का अखरी अर्थ है कि डंडे की तरह विश जाना। पर चेते रखियो डंडे का भाव की है जी, डंडे का मतलब ये तो नहीं एकदम सीधे पै जाने। जेड़ा डंडा बंदे के हाथ विच होवे ना, उस डंडे की मर्जी खत्म हो जाती है। देखो मालिक की मर्जी है डंडे नू डांग नू मोढ़ियां ते रखे, मैं सीधी पेंडू जे शब्द वरतना। मालिक की मर्जी है डंगोरी नू किसे घर दे कोने विच रखदा है, मालिक की मर्जी है डंडे नू मंजी दे थले सड़दा है, मालिक की मर्जी है डंडे नू चुक के किसे दे सिर विच मारदा है। ते जे पुछिए डंडिया तेरी अपनी मर्जी कोई नहीं, वह कहिंदा जिद्दण तां इहदे हाथ विच डंडा बन के आ गया, मेरी अपनी मर्जी खत्म हो गई है। डंडावत का मतलब ही है वे कि डंडे की तरह अपनी मर्जी नू खत्म कर दे। साहब ने कहा जदों नमस्कार करेगा ये डंडौत होगी ते सच जानी। जे जप पढ़ने ते साहब हुक्म तो शुरू करके केती छुट्टी नाल तक ले जांदे ने, ते जदों जाप नमस्तक तो शुरू करने संपूर्णता करते ने सजना। केवल आ लोक का दुख नहीं, चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र भुगते, सुयंबर सुमन सर्वदा सर्व सर्व जुगते, दोकालंक प्रणाशी दयालंक स्वरूपे। चेते रखी अमृत तो डोलेगा नहीं जे जाप रहेगा, क्योंकि सदा अंग संग है अपंगिंग विभूते, वो तेरे अंग संग रहेगा। जाप की बाणी विच अंग संग रह के नमस्कार करने की जाच दसी। जदों आ गए सवैये ते सुधा सवैया विच कृपा कीती, कह लगे सिखा किते चार चखे हो जाण ते मान विच ना मतिया जाई, किते कमाई करन लग पै ते खौमे विच ना फस जाई। साहब कहिंदे मैं बड़ी दुनिया देखी है, सरावक शुद्ध समूह सिधान के देख प्रयोग कर जोग जती के, सूर सुधारदन शुद्ध सुधा विच संत समूह अनेक मति के, सारे देश को देख रहे हो मत को ना देखिए ते प्राण पति के। श्री भगवान की पाए कृपा हुंते एक रती बिन, एक रती के रब के चरणा विच रते जान तो बिना तेरी कीमत रती नहीं पैनी। तो चुंदे हो जे तेरे सामने सिखा किते दौलत वाले आउन, ते अमृतधारी सिखा उन्हां दी कान ना मनी। क्यों कहन लगे जीत पर सब देश दिशान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूर गजान के सुंदर खिंसत तय है राज हजारे, भूत भविख भगवान के भूपत कौन गने नी जात बिचारे, श्री पद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के, धान सुधारे मर के चले गए जमा दे घर नू तू कादी कारक मनी। हे गुरु कलगी वालिया पहला तुसी जप किया फिर तुसी जाप किया, हुण सवैया विच साना कोई दसना चाहते हो, तवज्जो दिओ। अमृत की तीजी बाणी सी सवैये, कह लगे मैं तेनू दसना चाहना वा भावे जप करी भावे नमस्कार करते हैं जाप करी, जप ते जाप ता प्रवान ने के साच कहो सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो तिनी प्रापायो, प्रेम करी तवज्जो दिओ। हुण चौथी बाणी आई चौ पई सह। वेखो मैं पिछली बारी एक किते कर्ज करके गया सा, सिख नू तोप सिख नू तलवार सिख नू गोलियां फांसियां कोई भी खत्म नहीं कर सकती, पर जदों भी जग्यासू की मौत हुंदी है अपने मुरशद उत्ते शक करके हुंदी। सच जानी जदों अपने मुरशद ते शक आ जाए, सोहनी रोज चना नू तरदी सी, मैं सिर्फ संकेत विच अर्ज करा, भावे कच्चा भांडा सी एक दिन मन विच आया सी कि इश्क ता प्यार ता है पर ओदी अख दे विच इक छोटा जिहा दाग है, एक छोटे जे दाग दे शक ने सोहनी नू डोल के रख दिता। बस एक मैं बेनती करा अमृत अमृत सरते ते खंडे पाते दे अमृत ते बाणी ते शक ना करियो। जदों तुसीं जांदे हो इत्थों भावें महापुरुष आउंदे ने उहनां दे स्थानां ते जी सदके जाओ, जे गुरु नानक साहिब दी सिक्खी नूं प्यार करदे हो गुरु रामदास दे चरणां विच मत्था टेकणा कदी ना भुल्लो। हरिमंदर साडा धुरा है। खैर हजूर ने सवैया तो बाद आई चौथी बाणी चौ पई, कहन लगे सजना जप कीता होवे जाप कीता होवे प्रेम कीता होवे ते एदा भी मान नहीं करीदा, ते बेनती करिया करी खमरी।

शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख तोवे सुकहु टल गुर सेविए एहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

निर्दोष, लेकिन फिर वो दुष्ट क्यों हार गया? क्षमा करने जब इस तरह दी कुछ साड़ी कौम हारी, इतने मैं इसनों नहीं कहता, लेकिन हार जगत नूं प्रतीत होई कि देश दे तमाम अखबार कलम दे धनी जबान दे धनी क्षमा करनी साडे मुखालफ ही लिखण लगता। मैनू तो एक अखबार भी ऐसा नहीं मिलिया जो किधरे हक च गल करदा होवे। सारे देश विच मैं भ्रमण किया। उपमा ते जेतू दी होवेगी और गजब दी गल विभीषण भी टीवी ते बोलदा है, जे सकता सकते को मारे तामन रोस ना होई। शर्म दी गल लजानी चाहिए तेनू, 40-50 मासूम बंदे बंदूक वाले टैंक चढ़ा के लह जाओ। ते गुरु नानक दी पंक्ति क्या पूरी उतर दी कि जे सकता सकते को मारे तामन रोस ना होई। ते पंक्तियां तू इसे वास्ते कंठ कीतियां सन कि इत्थे ही सुनानियां ने। और इंज कौम इन्हां पंक्तियां दे नाल जो है मार करनी है। क्षमा करनी घर का भेदी लंका डाल, और घर का भेदी जब भरा होवे, राजदार होवे, जानन वाला होवे, ते दुख बड़ा होंदा। मैनू गाथा चेते आई, मनसूर नू जद सूली ते चाड़न लगे ने, ते वक्त दे बादशाह ने कह दिता इनू सूली चालन तो पहले सारिया ने एक एक पत्थर मारना। ते अगों खड़ा सी शिवली, भीड़ दे सब तो अगे खड़ा, ते शिवली जिगरी दोस्त, ब्राह्मा वाला रिश्ता मनसूर दे नाल। ते शिवली कंब गया, जे मैं पत्थर ना मारिया ते हो सकदा है मैनू भी सूली ते टंग देण, गल ते नहीं और की है। ते जे मैं पत्थर मारिया ते मनसूर बेदाग है, निर्दोष है, पवित्र आत्मा है, खुदा शनास है, खुदा प्रस्त है। सोची पिया, इतने च बादशाह ने हुक्म कर दिता कि मारो इसने एक एक पत्थर। पत्थरां दी बारिश शुरू हो गई। मनसूर हसदा रहा। शिवली दे कोल एक फुल सी, उन्हें सोचिया चलो हुण मैं ये मारा, अगलिया नूं पता तो चल जाए मैं कुछ मारिया। उन्हें खिच के फुल मारिया, मत्थे ते लगिया, चीख निकल गई मनसूर दी। शिवली कोल गया ते कहिंदा मित्रा, लोकां ने पत्थर मारे मुस्कुरांदा रहे, मैं तेनू फुल मारिया तू रो पे। मनसूर ने कहा, तू फुल भेट नहीं कीता मारिया। जिन्हां ने मैनू पत्थर मारे मूड सन, नादान सन, तू मैनू फुल मारिया। तू ते ज्ञानी सी, तू ते सियाणा सी, तू ते आलम सी, तेनू ते मेरा पता सी, मेरे इतिहास का पता सी, मेरी जिंदगी का पता सी, पर तू भी मारिया। रो पिया शिवली, पैरां ते गिरिया, कहिंदा माफ करी मित्रा, पत्थर मारन की हिम्मत नहीं हुई, फुल मैं मारे, पर मैं मारिया जरूर है। पर मैं समझना धन है वह शिवली जिन्हें पत्थर नहीं मारिया, फुल मारिया। अज दे शिवली ने तो कई पत्थर मारे, खिच के मारे, और अजे भी मार रहे। और गजब की गल, उस शिवली ने मनसूर दे चरणा ते शीस रख के मथा टेकया भी मैथों भुल हुई है। अज दा शिवली कहिंदा, नहीं, जो मैं बोलिया, जो मैं कीता, जो मैं मारिया, ये ठीक कीता, ये जायज है। ते गुस्ताखी माफ, बाकी जो कुछ साढ़े जो है खिलाफ कर रहे ने, मैं ते समझदा ये कठपुतलियां ने, ते जिन्हां दे हाथ च दागे ने तिना कठपुतलियां नूं लचा रहे ने। क्षमा करनी, कौम जिन्ने चिर तक उन्हां दा बाईकाट नहीं करेगी, मुश्किल है कि कौम अगां वध सके। इस वास्ते बाबा जो है दीप सिंह जी दे इस महान पवित्र स्थान तो मैं ये दो बिने जो है सिंह साहिबान दे चरणा जो है करांगा, इस नूं दूर दृष्टि दे नाल लैण। बाकी तो सब कठपुतलियां ने।

संत की लोच की हो सकती है, संत की टांग की हो सकती है। भगत की कामना, भगत की टांग लोचा, भगत किसन वेखना चाहता है? लोचन तो लोचा शब्द बने, लोचन कहने अखा जिन्हू वेखण की अंदर प्यास होवे उन्हू कहने लोचा, अखा लोचन। जिन्हू वेखण की बड़ी तड़प ते प्यास होवे लोचा। पर किसे बुरी वासना नाल किसे एक थां ते लोचन टिक जान उन्हू कहने ने लुच्चा। लोचा ते लुच्चा दो शब्द बड़े निकट वर्ती ने, पर अर्थां दे जमीन आसमान दा भेद है। घूर घूर के वेखना, लोभ भरी दृष्टि नाल, कामना भरी दृष्टि नाल घूर घूर के वेखना, ते घूर दियां या नजरां टिका देनियां। लोचन किधरे टिका देने, लुच्चा गाल बन गई भई ते लुच्चा है, बाहे ते घूर घूर के वेखद। अखरी अर्थ यह बन देना लोचन अखा। ते इसे लोचन तो दो शब्द बने, लोचा और लुच्चा। लोचा जिनू वेखण की प्यास है, जिनू वेखण की तांग है, जिनू वेखण की तड़प है लोचा। ते लुच्चा जिथे घूर घूर के नजर टिका दितियां गई, वेखण की प्यास है वो दृष्टि कुछ होर, घूर के तकण की दृष्टि कुछ होर। एक शब्द धार्मिक दुनिया दे उपमा वाला हो गया, एक शब्द ते गाल ही बन के रह गया लुच्चा। महाराज कहने प्रभु ने साड़ी लोचा पूरी कर दिती। केड़ी लोचा सी? प्रभु नू वेखण दी, उन्नू वेखण दी जड़ी लोचा सी, उन्नू वेखण दी जड़ी प्यास सी। लोचा वेखण दी प्यास, वेखण दी तांग वो पूरी कर दिती। पर किस द्वारा पूरी हुई, किवें पूरी हुई? महाराज कहिंदे ने गुरु पूरे कृपा धारी, पूरे गुरुदेव ने बख्शिश कर दिती, उन्हें सूझ ते समझ दे दिती भई तेरी लोचा किवें पूरी हो सकती है। तो गुरु सिर्फ जप की प्रेरणा करता है, जप की विधि दसदा है। गुरु माहौल ऐसा बनांदा है कि मनुख की लोचा पूरी हो जाए। इस वास्ते कहिंदे ने बंदे का फर्ज है गुरु तक पहुंचना, फिर गुरु का फर्ज है बंदे नू रब तक पहुंचाना। गुरु तक पहुंचना बड़ा औखा है, अगर कोई पहुंचे तो गुरु उसनू लाजमी परमात्मा तक पहुंचा देंदा। तुसी आखोगे गुरु तक पहुंच गया, तन दी गल नहीं मन दी गल है। इसनू मैं कहना हुना हाजरी भरण वाले बहुत सारे ने, गुरु दी हजूरी विच बैठण वाला कोई कोई है। हजूरी च मन बैठना है, हाजरी तन ने भरनी है। इत्थे हजूरी दी प्रवानगी है, हाजरी दी कोई बहुत वड्डी गल नहीं है। तो गुरु सूझ देंदा है, समझ देंदा है, जपण दी प्रेरणा देंदा है, जपण दी विधि देंदा है, जिस द्वारा लोचा पूरी हो जाती है परमात्मा नू वेखण दी। तो साहिब कहिंदे ने पूरे गुरुदेव ने बख्शिश की थी, ते पूरे गुरु दी बख्शिश की है ज्ञान सूझ समझ। गुरुद्वारे आके की लेना है, गुरु कोलों की लेना है? गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी, इत्थों ते सूझ दी प्राप्ति होंदी है सोजी दी। जिन्हों सूझ मिल गई गुरु दी बख्शिश हो गई, जिन्हों ना मिली सूझ क्या गुरु दा कसूर? नहीं, गुरु दा कसूर नहीं। सूरज रोशनी दे रहा है सारियां नू दे रहा है, पर जिहड़ा अखां बंद करके बैठ गया उहदा रोशनी नाल संबंध टुट जांदा है। गुरु सारियां नू सूझ देंदा है, पर जिहड़ा बेमुख होवे, गुरमुख है ही नहीं, गुरु की गल ही नहीं मनदा, गुरु की सिख्या कबूल ही नहीं, गुरु के पाए हुए पूर्णियां ते चलना ही नहीं, बेमुख मनमुख। ते मनमुख का मतलब है उन्हें मन की अख बंद कर ली है, वो गुरु के चानने तो वाई जो अख

0: کھول کے سنتے ہیں، اکھاں کھول کے بیٹھتے ہیں، اکھاں کھول کے آمدے ہیں۔ اس نو میرے پادشاہ نے کہہ دیتا ہے، پرب کی استت کرو سنت میت ساودان ایکاگر چیت۔ جو ساودانی نال بیٹھتا ہے اکھاں کھول کے بیٹھتا ہے، جو ساودانی نال بانی پڑھتا ہے وہ اکھاں کھول کے پڑھتا ہے، جو ساودانی نال کیرتن سنتا ہے وہ اکھاں کھول کے کیرتن سن رہا ہے۔ سچیت ہو کے ساودھان ہو کے جو ایسا کرتا ہے وہ گرو کی بخشش ہو جاتی ہے، کہ انہوں سوج مل جاتی ہے، انہوں سمجھ مل جاتی ہے، انہوں سیانت مل جاتی ہے۔ گرو دوارے ہوئے سوجی پائے سی، پھر اس سوجی دوارا اس پرماتما کی پراپتی ہو جاتی ہے، اکال پورکھ کی پراپتی ہو جاتی ہے۔ تو صاحب کہتے ہیں پورے گردیو نے بخشش کی تھی، پرماتما ویکھن کی جیڑی ساری لوچا سی، جیڑی ساری تانگ سی، تڑپ سی، تو پھر پرماتما نے آپ پوری کر دیتی۔ اگاں آپ سرون کرو۔ ہاں جی، نام سمرن ادھیاتمک جل نال جد اسی اشنان کیتا تا من اپنے گھر وچ آیا، میرے من پردیسی وے پیارے آہو گھرے۔ اپنے گھر وچ میلے من واسطے کوئی تھان نہیں، اشنان کر کے آنا پے گا، اور اشنان نہیں کیتا تے دوار بند، رستے بند۔ تے اشنان کرنا کی ہے؟ جویں اوپر بندہ پانی پاندا ہے تے سہجے سہجے سوچھ ہوندا ہے نا، صابن لاندا ہے، جتھوں جتھوں دی محل ہے اس نوں پٹدا ہے، دھوندا ہے۔ واہگرو واہگرو جپی جانا، بانی پڑھی جانا، بس اشنان کرنا ہے، جپنا اشنان کرنا ہے، بانی جپنی اشنان کرنی ہے۔ جیسے کوئی اشنان کر لیندا ہے انہوں اپنے گھر وچ ٹکانا مل جاندا ہے، میلے واسطے تھان نہیں ہے۔ اٹاں دے پتھراں دے بنائے ہوئے مکان وچ تے بندے میلے کچیلے بھی رہ سکدے نے، ایسی کوئی گل نہیں۔ پر اپنا گھر جو نجی گھر، ادھیاتمک گھر، پرماتما دا گھر ہے، اتھے میلیاں لئی تھان نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس واسطے لازمی ہے اشنان کر کے آنا۔ کر اشنان گرہ آئے، اشنان کیتا اسی نام سمرن نال، نام دے جل نال، تے من اپنے گھر وچ آ گیا۔ جپدیاں ہی اپنے گھر وچ آ جائے گا، جپدیاں ہی پاون ہو جائے گا، جپدیاں ہی ٹک جائے گا۔ من دا ٹک جانا اپنے گھر وچ آ جانا ہے۔ اور ستگرو دی بانی کدی تے ساڈے من نو بار بار کہندی ہے، میرے من پردیسی وے پیارے آؤ گھرے۔ اپنے گھر دے چا، جتھے تک تو بھٹکیں گا سب پردیس ہے، من پردیسی جیتھے سب دیس پر آیا۔ اتھے کچھ بھی اپنا نہیں، آ اپنے گھر وچ، آ اپنے ٹکانے وچ۔ مہاراج کہندے نے نام سمرن دے جل نال اشنان کر کے جد من اپنے گھر وچ آیا تاں آنند دی پراپتی ہو گئی، سکھ دی پراپتی ہو گئی، منگل دی پراپتی ہو گئی، کھیڑیاں تے خوشیاں دی پراپتی ہو گئی۔ ہاں جی، ہاں جی، ہو سنت جنو، اس طرح دی آنند مئی اوستھا، اس طرح دی سکھ مئی اوستھا، اس طرح دا دکھاں تو جڑا چھٹکارا حاصل کرنا ہے، وہ کیول اکو ایک سادھنا ہے، ہے سنت جنو، رام نام نسترئے، رام نام دا جاپ کرو۔ اسے نال ہی بندہ پار ہو جاندا ہے، تر کے پار لنگ جاندا ہے دکھاں تو، کلیشاں تو، وپتاواں تو۔ اے سنت جنو، یہی جو ہے اوسر ہے، یہی ایک طریقہ ہے، اور کوئی ڈنگ نہیں۔ ہاں جی، یہی سکرت دن رات کرنا چاہیے، یہی شبھ کرم کرم جڑا ہے دن رات کرنا چاہیے۔ کہڑا؟ اٹھت بیٹھت ہر ہر دے آئیے، اٹھدیاں بیٹھدیاں، ان دن سکرت کریے، دن رات یہی سکرت کرو، یہی شبھ کرم کرو۔ میں پھر عرض کراں، اینوں کسے ہور پاسے نہ لانا، بھئی شبھ کرم کرو تے پھر نام جپو۔ نام جپن تو وڈا ہور کوئی شبھ کرم ہے ہی نہیں، اور جو نام جپدا ہے اس تو شبھ ہی ہوندا ہے، جو کچھ بھی ہوندا ہے شبھ ہوندا ہے، اشبھ ہوندا ہی نہیں اس تو۔ وہ جو کچھ بھی کردا ہے ٹھیک کردا ہے، साहिब कहने दिन रात तू ये सुकृत कर, शुभ कर्म कर, चंगा कर्म कर, केड़ा उठत बैठत हर हर ध्याई, दिन रात उठद्या बैठद्या हरी हर दा जाप कर, ईश्वर दा जाप कर। मैं फिर अर्ज करद्या किधरे हरी हर दा जाप, राम दा जाप, अल्लाह दा जाप, खुदा दा जाप, गोरख सोए जन गोर उठा ली करते बार न लागे। इत्थे अनेका नाम ने ते साहिब कहने ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अनंत नाम गाए हो, परग पुरख पाए हो, बलहारे जाऊं जेते तेरे नाम है अनंत नाम ने। जे एक फुल दे कई नाम हो सकते ने, एक फल दे कई नाम हो सकते ने, तो मैं अर्ज करा कि सृष्टि का जिहड़ा करता है ना, मनुख ने अपनी बोली के मुताबिक ओदे भी कई नाम रखे ने। किसे एक नाम नूं चुन के दावा करी जाना गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज इसे नाम दे जप बारे कह रहे ने, क्षमा करनी है, बहुत वड्डा झूठ है। ते डिंब ही अपना इस ढंग नाल डिंब जो है चलांदे ने। ते सारे मंत्र ने गुरु दे, पर जो गुरु दी पाई हुई लीक ते चलना चाहता है, अधिकारी बनना चाहता है, तो अधिकारी लई प्राचीन समय से सिलसिला के चरणामृत पिला के उन्हों गुरु मंत्र की दीक्षा दे दी जाती सी। चरण धोए रह रास कर, चरणामृत सिखा पिलाया। गुरु नानक देव जी महाराज तो यह परंपरा चली, मसंदा ने फिर यह परंपरा चलाई, गुरु तेग बहादुर साहब जी तक यह परंपरा चलती रही, पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं बदलनी पई, सुधार करना पिया। बाद विच उही लोग चरण धो धो के पिलाण लग पए सन जिन्हां दे चरणां च कख भी नहीं सी, कुछ भी नहीं सी। चरण ते ओ महान ने जिथे टिकन ते खाक धूड हो जाए, मत्थे ते लाण जोगा हो जाए। सुरमा कुंतो खाक औलिया, ताबा बीनी इब्तिदाता इंतहा। जे आद तो लैके तू अंत तक वेखना चाहना है ता किसे परम पुरख की चरण धूड़ नू मस्तक ते ला। नाम रसिया जिथे खड़ा होगा उदे कदमां नाल खाक पवित्र हो जाएगी, ते जे उदे कदमां नाल खाक पवित्र होगी ते उदे कदम छोण नाल पानी भी पवित्र होगा। जन के चरण तीरथ गोट गंगा, महापुरुष दे चरण मानो करोड़ा गंगा दा इशनान है। करोड़ा गंगा उस तो कुर्बान कीतियां जांदियां ने, गंगे महापुरुष दे चरण छूह नाल पवित्र होंदी है। इंज समझ लो बहुत सारे नाम रसियां ने, भगत जन्ना ने गंगा दे किनारे अपनियां झुगियां बना लईयां सन, नाम जपण लई रोज उसके चरण पांदे सन, इशनान करदे सन, जल पावन हो गया सी, अमृत हो गया सी। ये हकीकत है, बहुत वड्डी जो है सच्चाई है कि महापुरुष दी चरण छोह नाल पानी पानी नहीं रहिंदा, पानी अमृत हो जांदा है। खाक खाक नहीं रहिंदी, खाक अक्सीर हो जांदी है। उंज बाणी दीआं जिहड़ियां लहरां ने, कोई कीर्तन हो रहा होवे ते उह जिहड़ियां लहरां ने कीर्तन दीआं, नाम जप दीआं, सिमरन दीआं, उह पानी ते खाक नूं ज्यादा मुतासर करनगीआं। इतनी मैरिज कर दे, बहुत प्रभावित करनगीआं खाक नूं और पानी। धार्मिक पुरखां ने बहुत पुराने समय तो खोज कीती है कि नाम जपदा, नाम सिमरन दा पानी ते खाक दे उत्ते बहुत वड्डा असर पैंदा है। खाक अक्सीर बन जांदी है, पानी अमृत बन जांदा है। आखिर असीं पंज बाणियां दा पाठ करदे आं, कंडा फेरदे आं ते फिर पानी अमृत बन गए। इत्थे ते अठे पैर गुरबाणी दीआं तरंगां ने और इस पानी च मिश्रित होंदियां ने। इस तरह दा होर किधरे भी निजाम देखण नूं नहीं मिलदा। इस वास्ते पानी पानी नहीं, ये जल जल नहीं, अमृत है, क्योंकि अमृतमई बाणी का संयोग हर वक्त बने हुए हैं इस सरोवर के नाल। सो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा कर इशनान ग्रह आए, आनंद मंगल सुख पाए, संतो राम नाम निस्तरिए, उठत बैठत हर हर ध्याइए, अन दिन सुप्रत करिए। दिन रात तू यही शुभ कर्म कर कि उठदियां बैठदियां बस जप, वाहेगुरू वाहेगुरू जप, यही सुकृत है। इस तो वड्डा होर कोई शुभ कर्म नहीं, यही अध्यात्मक इशनान है, इस तो वड्डी होर कोई पवित्रता नहीं। हां जी अगलियां पंक्तियां सुनो। साहिब कहिंदे ने संत का जिहड़ा बनाया रस्ता है, धर्म का जोड़ा बनाया हुआ रस्ता है वह की है वह पौड़ियां ने तो मार्ग इस तरह का जमीनी नहीं कि भज के चल पाओ तो पौड़ियां ने पौड़ियां से सहजे सहजे चढ़ना पैदा पौड़ियों तो कोई भज के कितनी दूर तक जाएगा पर पौड़ियां अनंत ने चढ़ना है। इस वास्ते मैं अर्ज करा संत का मार्ग गुरु का मार्ग प्रभु का मार्ग कोई जमीनी रस्ता नहीं है तो पौड़ियां ने इत पहाड़ी रस्ता है एक अवगट घाटी राम की तें चढ़ रहे हो कबीर इत घाटी है घाटी चलत बैल एक थाका चलो गौन छिटका कबीर किरण घाटी ते चलदियां चलदियां मेरा मन रूपी बैल थक गया सिमरन करदियां करदियां थक गया नाम जपदियां जपदियां थक गया साधना करदियां करदियां थक गया पर अजे मैं मंजिले मकसूद ते नहीं पहुंचे ते चढ़ना एक पौड़ी है। धर्म जमीनी मार्ग नहीं है पौड़ियां और इस पौड़ियां ते सुरत ने चढ़ना है उस पौड़ी के उत्ते सुरत नूं सहजे सहजे चढ़ना है ते चढ़न लग्या उखियाई हुंदी है लाजमी हुंदी है। इस वास्ते हर बंदे कोल जप नहीं हो सकता जप का मतलब कि सुरत नूं उच्चा चढ़ना पानी निमाण की तरफ अपने आप जाता है उपर चाड़ना हो प्रेशर चाहिए दबाव चाहिए सुरत में उपर लै जाना है बड़ी करड़ी साधना चाहिए कि जप इस वास्ते साहब कहते हैं गुरु का मार्ग संत का मार्ग धर्म का मार्ग जमीनी मार्ग नहीं पौड़ियां ने तो पहाड़ी रस्ता है कोवड भागी पाए इस रस्ते कोई बिरलावट भागी जो है अबूर करता है प्राप्त करता है चढ़ चढ़ के। मैं फिर अर्ज करा आखण औखा साचा नाम जोड़ा कह दिता है मेरे पातशाह ने जप के कभी देखना बहुत औखा है। वाहिगुरु वाहिगुरु मनुख इंज उचारण करे तो इनू कन नाल सुने लवज मैं फिर दोहरा दें तो जब तुम सुन बैठोगे तो नहीं सुनोगे वाहिगुरु वाहिगुरु रसना कर दी रहेगी सुनोगे नहीं ध्यान किसी होर पासे हो जाएगा सुनते ता सकोगे जे ध्यान हो धुन ध्यान की साधना यह शब्द सुरत की साधना यह पौड़ियां ने यह चढ़ना है यह बिखम है यह मार्ग औखा है नाम सिमरन का साहब कहन को वड भागे पाए को विरला वड भागे इस मार्ग न अबूर करके मंजिले मकसूद पर पहुंचता है। हां जी इस पौड़ियों ते चढ़ के जो मंजिले मकसूद तक पहुंच जाता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं करोड़ों जन्मों के संस्कार मिट जाते हैं करोड़ों जन्मों के दुख मिट जाते हैं। एक जन्म का दुख होवे तो शायद असी एक साल में दूर कर छड़िए कई जन्मों के अंदर संस्कार ने कई जन्मों के अंदर पाप ने इकट्ठे ने ढेर वधदा ही जा रहा है वधदा जा रहा है पर इस पौड़ी से चढ़ के जो मंजिले मकसूद से पहुंच जाता है साहब कहने वे करोड़ों जन्मों के पाप बन जाते हैं करोड़ों जन्मों के दुख मिट जाते हैं। हां जी जिस संसार जिस परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी पूरी कला वरताई हुई है भाव अपनी सता रखी हुई है और अपनी सता के आसरे के सूर्य चंद तारे जमीन आसमान पशु पंखी सागर हवा सब टिका के रखी हुई है उसकी उस्तत करो जिसने अपनी कला वरता रखी है जिसने अपनी सत्या के नाल सारे निजाम जो है काबू च किया होया है उसकी उपमा करो उसकी महिमा गायन करो तो तुम आखोगे महिमा गायन करने उस्तत करनी तो खुशामद दिल्ली च सज्जन मैं कह लगा बंदे भी खुशामद की लोड़ है आखिर बंदा रब ने बनाया जब रब खुशामदी है तो बंदा भी खुशामदी है रब की उपमा करो तो रब बख्शिश करता ना करो तो नहीं करता। मैं खर भुल गया तू गल समझिया ने तो मैं कह लगा धार्मिक दुनिया तो यही आख्या जाता ना रब की उस्तत करो रब की उपमा करो तो जे रब न उपमा की लोड़ है तो आखिर बंदे उपमा की लोड़ हो तो फिर निंदा कही गल दी बंदे भी उस्तत की लोड़ है क्योंकि रब न उस्तत की लोड़ है तो सारे संत जन कहते हैं उसकी उस्तत करो हूं उस्तत उस्तत अंतरा की है यह मैं अर्ज कर दें। सूरज भी उस्तत करी है तो साड़ी उस्तत करन नाल इहदे च चमक नहीं है, है ते जे ना करिए तो कोई अंधेरा नहीं हो जाना। परमात्मा नूं वड्डा वड्डा करके आखिए साडे वड्डा वड्डा आखण नाल वड्डा नहीं है ते जे किधरे ना आखिए तो उन्हें छोटा भी नहीं हो जाना। जे सब मिलके आखण पाए वड्डा ना होवे गाट ना जाए। साडे वड्डा वड्डा आखण नाल वड्डा नहीं है ते जे ना आखिए तो छोटा भी नहीं हो जाता। दूजी किसे संगीतकार की उपमा करिए उस तक करिए तो बंदा संगीतकार नहीं बन जाता। किसी महान दार्शनिक कवि की उपमा करिए तो बंदा कवि नहीं बन जाता। किसी करोड़ों पति अरबों पति धनवान की महिमा गायन करिए तो बंदा कोई धनवान नहीं हो जाता। किसी हुक्मरान की उस्तक करिए तो बंदे को कोई राजपाठ नहीं मिल जाता, कोई बंदा हुक्मरान नहीं हो जाता। पर सच जाणो कोई भगवान की उपमा करे तो भगवान ही हो जाता है। कोई गुरु गायन करे तो गुरु वर्गा ही हो जाता है। कोई रब की महिमा गायन करे तो रब वर्गा ही हो जाता है। हुण धनवान की महिमा करिए तो महिमा करने वाला निर्धन बनिया रहे, महिमा क्यों गाइए? फिर गाने का मतलब किसी कलाकार की महिमा गायन करिए तो आप निगुण ही बने रह जाए। तू बड़ा संगीतकार है, महान संगीतकार है, तू संगीत दियां सारियां बारीकियां नूं समझना है। तो आप जब पाठ भी करे तो बेसुरा होवे तो फिर पीती हो तो उपमा की संगीतकार भी तो सारा दिन बेसुरा बोली जाना। तू आप उपमा की महान कवि तो तेरे बोलों में कोई तरतीब कोई नहीं, कोई कविता की झलक नहीं। तू उपमा की धनवान भी तो निर्धनता तेरी बनी हुई है। तू उपमा की हुक्मरान भी तो गुलामी तेरी बनी हुई है। तू हुक्मरान तो बने हैं, गुलामी तेरी बनी हुई है। नहीं तो उस हुक्मरान की उपमा कर जिसकी उपमा कर दिया तू भी राजा हो जाए, तू भी महान हो जाए। तो उस धनवान की उपमा कर कि तेरी सारी की सारी निर्धनता मिट जाए। हम निर्धन जो एहो धन पायो मरते फूट गुमाने। भगत कबीर कहने जिस दिन का मैनू नाम धन प्राप्त होया उस दिन के बड़े बड़े धनवान भी फुट के मरते पे ने। तू है यह परम सुख इसने कितों लभ लिया, यह परम आनंद इसने कितों लभ लिया। तो रब की उपमा करनी रब की लोड़ नहीं, यह साड़ी लोड़ है। तो परमात्मा की उपमा करन वाला आप उपमा योग हो जाता है। परमात्मा वड्डा वड्डा आखण वाला आप वड्डा हो जाता है। परमात्मा का जो हुक्म मन लैंदा उसका हुक्म फिर तीन लोगों से चलता है। इन्नी मैं अर्ज़ कर दें परमात्मा नाल जो जुड़ जाता है वह सर्वशक्तिमान हो जाता है। इस वास्ते संतों की जुड़िया पुरुषों की सुखमनी साहब विच बड़ी महिमा है। कारण कि संत राम ने देह ना भाई, राम की महिमा गायन करदिया करदिया संत राम वर्गा ही हो जाता है। भगत गुरु वर्गा ही हो जाता है, सिख गुरु वर्गा ही होता है। गुरु सिख, सिख गुरु है, नानक भेद ना भाई। जिथे भेद बिल्कुल मिट जाए धनवान की उपमा करो निर्धन ते धनवान का भेद बनिया रहेगा। गुणवान की उपमा करो तो निर्गुण ते गुणवान का भेद बनिया ही रहेगा। और उसी तरीके नाल हुक्मरान की उपमा करो गुलाम के हुक्मरान का भेद बनिया ही रहेगा। पर यकीन जानो परमात्मा की उपमा करिए तो परमात्मा के उपमा करने वाले च भेद मिट जाता है। परमात्मा वर्गा ही हो जाता है, गुरु वर्गा ही हो जाता है, अकाल पुरख वर्गा ही हो जाता है। इस वास्ते सहज कहने कि तू उस परिपूर्ण परमात्मा की उस्तत कर जिन्हें अपनी सत्या के नाल सारे जगत में नथिया होया काबू किया होया। तो उसकी महिमा गायन कर, तो उसकी उपमा कर। हां जी
1: चंद सब भय सतगुरु की सच साखी।
0: सतगुरु की सच्ची सिख्या जेड़े जीव मन लेंगे ने वो सारे के सारे जीव जंत पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। जो सतगुरु की सच्ची सिख्या धारण कर लेंगे ने वो सारे के सारे जीव पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, महान हो जाते हैं। हां जी गुरु ने ऐसी नाम विच दृढ़ता करा दी है कि जितने विघन ने सब नाश हो गए, सब मिट गए। महाराज कहने ने विघन न को लागता गुरु पै अरदास। जिदी हर वक्त अरदास गुरु के अगों है उत्थे विघन नहीं है। जिथे अरदास नहीं, जिथे गुरु नाल जुड़ना नहीं, जिथे गुरु की सिखिया धारण ने पता उठे कितने विघन ने महाराज की बाणी कह दिए कोट विघन तिस लागते जिसनू बिसरे नाउ नानक अन बिन बिलपते जुन सुन्ये घर का उन्हों ते करोड़ा विघन लगते सवेरे विघन दोपहर नो विघन शामी विघन विघना दी जिंदगी लगती विघन ही विघन पैंदा पर महाराज कहने सतगुरु ने ऐसी नाम की दृढ़ता करा दी है कि सारे विघन नाश हो गए ने सारिया बलावां दूर हट गई ने सारिया रोकां मिट गई ने। हां जी सतगुरु की सच्ची साखी नाल शिक्षा दे नाल नाम जप नाल जितने पाप सन सारे दे सारे मिट गए आत्मा निज घर विच आ गई मन अपने निजी घर विच आण के जो है वसे धर्म दी सारी साधना है कि किसी तरीके नाल मनुख नूं निज घर दी प्राप्ति हो जाए अपने अस्थान दी जो है प्राप्ति हो जाए ते इस संबंध विच साडे देश विच वख वख तजर्बे होए जितने तजर्बे होए ये सारे तजर्बात उन्हां दी व्याख्या थोड़े थोड़े जो है समय च मैं सारी दी सारी कर देंगा मुख्तसर रूप विच क्योंकि लिखते इतिहास वल कम घट तो घट या वद तो वद तीन साढ़े तीन हजार साल का ही मिलता है उस तो पिछे जाइए तो नहीं तो चलो इतनी दूरी तो यात्रा आरंभ करिए। इंज कहिए कि राम तो यात्रा आरंभ करिए श्री राम ने सोचा कि मनुख अपने निज घर विच आवे तो उन्होंने एक नियम बनाया मर्यादा बनाई और बड़ी सख्ती नाल लागू की थी कि आप दा नां पै गया मर्यादा परशोत्तम राम। अज दा ए त्योहार करीबन करीबन देश दे तमाम महापुरशां नाल जुड़दा है श्री राम नाल महात्मा बुद्ध नाल महावीर नाल सिख जगत नाल गुरु घर विच इस वास्ते दिवाली करीबन करीबन बड़े खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा मर्यादा जिंदगी मर्यादा दिख चाहिए तो मन अपने निज घर विच आ जांदा है सारा जोर श्री राम दा मर्यादा ते मर्यादा दी उलंघना ना होवे बड़िया पालना करनी है पुत्र मुकेड़ी पत्नी भी मर्यादा की है पति भी की है राजे भी की है प्रजा भी की है गुरु भी की है शिष्य भी की है वड्डे भ्राव प्रति छोटे भ्राव का की फर्ज है ते छोटे भ्राव प्रति वड्डे भ्राव का की फर्ज है भैन भाई दे रिश्तियां दी नियमावली वरस के मर्यादा श्री राम ने बना दी और लागू कर दी पर इस मर्यादा विच बहुत खुशकपना से इस मर्यादा विच ये होया कि बेकसूर पत्नी नूं भी अग्न परीक्षा देनी पएगी रावण दी कैद विचों जो निकली ते राम ने कह दिता मैं तेनू अग्न परीक्षा विच लंघे बिना घर नहीं ले जा सकता तू अग्न परीक्षा दे मैं मर्यादा बनाई है तो कहीं अग्न परीक्षा विच कोई करड़ी परीक्षा रखी होनी जो ना अग्न परीक्षा रख दिता उहदे चों पूरी उतरी मुकम्मल उतरी घर ले आया लेकिन धोबी ने लांछन ला दिता ते धोबियों के महल्ले विच उंगलां उठ गई राम ओही राम है जिसने भ्रष्टी हुई पत्नी अपने घर रख ली है हालांकि अग्न परीक्षा हो गई पावन पवित्र हो देवी गर्भवती सी सीता ते धोबी दे इल्जाम लाण नाल राम ने सीता नूं घरों कढ दिता जबकि एक दो महीने वो बच्चे नूं जन्म देने वाली सी घरों कढ दिता भई तू जा ए, बड़ा कठोर सलूक है राम की पूजा करन वालियां नूं मैं आखांगा कोई थोड़ी पत्नी एवं कोई लाछण ला दे घरों कढ दोगे, अगर घरों कढ दोगे तो फिर इस राम राज की लोड़ नहीं है। इस राम राज नूं की करना है जिथे बेकसूर पत्नी वास्ते भी घर विच थां ना होवे, सतवंती वास्ते भी घर विच थां ना होवे, कोई लाछण लाए तो घरों कढ दो, मर्यादा बना दिती सी, घरों कढ दिता। शंभूक नाम के जीवर ने तपस्या आरंभ कर दी कि ब्राह्मणा चंगी ना लगी, फरियाद की एक ब्राह्मणी ने राम के चरण च, मेरा नौजवान बच्चा मर गया है, किसने मारिया है, तू मारिया है। तो राम कह लगे मैं मारिया है, अकल टिकाने है तेरी, हां तेरे राज पाठ दे शूदर भजन बंदगी कर लग पे ने, शूदर नियम की उलंघना हो गई, मर्यादा की उलंघना हो गई। इतों एक गल स्पष्ट है कि राम राज भी शूदर नूं भजन बंदगी करन दा कोई अख्तियार नहीं सी। और कुछ लो इन्ना रामायण के ज्ञानियां नूं शंभूक नाम के जीवर के कन्ना विच शीशा पिघला के शीशा कन्ना च डाल दिता गया और उन्हूं तड़पा तड़पा के मार दिता गया। तू वेद मंत्र सुने ने ते जप क्यों पिया करना है? मैं बहुत सारे साधु समाज जिहड़े बैरागियां दे उन्हां दे कोल प्रश्न रखे है, इसे राम राज नूं इस देश विच लियाना है, क्योंकि राम राज परिषद एक संस्था बनी सी, सियासी पार्टी रही नहीं है, क्योंकि इन्हां इल्जामां दा जवाब किस तरह देणगे, क्योंकि राम राज विच शूदर वास्ते थां नहीं सी, राम राज विच बेकसूर इस्त्री वास्ते भी घर विच थां नहीं है, और राम राज विच पिता दे होंदे हुए बच्चे यतीमी दी हालत विच पलदे रहे बाल्मीक दे आश्रम विच। अगां एक होर महापुरश आए जिन्हां नूं असीं श्री कृष्ण करके जानदे हां, सारा देश जानदा है, उन्हां ने राम दी मर्यादा नूं एक पासे रख दिता, बई अधूरी है, इहदे विच इस्त्री वास्ते कोई थां नहीं रह जांदी, इहदे विच शूदर वास्ते कोई जगह नहीं रह जांदी, इहदे विच खुशकी ही खुशकी है, रोने ही रोने ने। राम की सारी अपनी जिंदगी रोंदियां ही बतीत होई, 12 साल रोंदे ही रहे, और कितने रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया। मैं अर्ज करा अज दे इन्हां बोलां नूं किधरे तुसी ईर्षा ते कोई तर्क ना समझ लैणे। मैं अपने ढंग नाल पढ़िया, थोड़ा जिहा अध्ययन किया, हो सकता गलत होवे, लेकिन गहरी दृष्टि नाल देखोगे तो जो कुछ मैं पढ़िया वो मैं थोड़े सामने रखा, इसनों मैं अपनी निगाह नाल वेख्या, तुसीं भी अपनी निगाह नाल वेख लो ते भारत के होर लोग भी वेख लैन, ते बथेरियां कोल मैं ये विचार रखी है कि शूगर वास्ते थां नहीं है, ते कोई पड़ोसी भी पत्नी ते लाछण ला दे घरों कढो, कोई थां नहीं है। इस देश दे अक्सर इसियां दे उत्ते घर घर के बहुते जुल्म होए, मैं तो समझदा यह राम की बनाई हुई मर्यादा करके, जे राम अपने घर पत्नी नूं नहीं रख सकते तो घरों बाहर कर सकते हैं, तो खिमा करनी किसने फिर सन्मान नाल रखना है घर विच? राम तो फिर यही प्रेरणा मिलेगी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। फिर शंभूक नाम का जीवर शूदर से विचारा भजन बंदगी कर रहा है, किधरे कथा हो रही सी ते बोल सुन लै सन उसने कि नाम जपन नाल पुराना पाप मिट जांदे ने, जपन लग पिया, तो सुन लीए ये गल, शीशा डाल दिता गया कन्ना विच, तड़पा तड़पा के मार दिता गया श्री राम दे हुक्म नाल। ये बहुत वड्डे इल्जाम ने ते गुस्ताखे माफ, परम पुरख ते ओह हुंदा जिहड़ा इल्जामां तों बरी होवे, जिहदे उत्ते कोई लाछण ना ला सके, जिहदे उत्ते कोई इल्जाम ना ला सके। तो अगां चलिए, श्री कृष्ण ने श्री राम की बनाई हुई सारी मर्यादा की दजियां उड़ा दतियां, एक पासे रख दी, और कृष्ण ने कह दिता मैनु ये मर्यादा प्रवान ही नहीं, कबूल नहीं, मैं नहीं प्रवान करता। इस वास्ते कृष्ण नूं किसी ने मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं आख्या, लीला पुरुषोत्तम आख्या, लीला पुरुषोत्तम। जन्म एक लीला है, मरण एक लीला है, नफा एक लीला है, नुकसान एक लीला है, तो रोना कड़ी गल का। इस वास्ते हंझू श्री कृष्ण की जिंदगी नहीं है, रोना पिटना श्री कृष्ण की जिंदगी विच नहीं है। दुख है, सुख है, हान है, लाभ है, ग्वालियां नाल गौवां चारना या द्वारका के सिंघासन ते बैठना है, दर दर की खाक छाननी है या गले विच मोतियां दी माला पहननी है। कृष्ण की जिंदगी नचदी हुई, टपदी हुई, मुस्कुरांदी हुई है। इस वास्ते साडे देश दे कुछ आलमां ने इंज कह दिता कि राम अंसा अवतार ने, श्री कृष्ण संपूर्ण अवतार ने। ये तो खुद हिंदू कहते हैं, जो ब्राह्मण कथावाचक कहते हैं उन्होंने बोल, जो उन्होंने धर्म ग्रंथां विच लिखे है, उन्हां दियां विचारां मैं थोड़े सामने रख रहा। अपने तरफों एक अखर भी नहीं, एक शब्द भी नहीं। लीला परशोत्तम, जिंदगी सारी मुस्कुरांदी हुई, उस तरह की मर्यादा जो जीवन को रुला के रख देवे और खुशकसाली ते बंजर बना देवे, वो कोरियां मर्यादावां कढ दित्तियां। सवाल यह, मर्यादा मनुख लई है कि मनुख मर्यादा लई है? मर्यादा दे उत्तों मनुख नूं कुरबान करोगे या मनुख दे उत्ते मर्यादा कुरबान करोगे? श्री कृष्ण ने चोण की, जिथे दोहां नूं चुणन की गल आवे उत्थे मैं मनुख नूं बचावांगा, मर्यादा नूं कुरबान कर देवांगा। मर्यादा तो यह है सच बोलना है, पर जो मैं झूठ बोल के भी पांडुआं नूं जिताना होवे तो जितावांगा। उन्हें झूठ बोले मैदान ने जंग, अश्वथामा हतो, अश्वथामा मर गया। युधिष्ठर नु कह, मर्यादा तो यह है परम पुरख सच बोले, असूल तो यह है, परंपरा तो यह है। कहने लगे नहीं, अगर इस मर्यादा विच पांडु मर गए तो पांडुआं का मरना मजलूम का मरना है, पांडुआं का मरना सच का मरना है, पांडुआं का मरना इंसाफ का मरना हो जाएगा। इन्हों की मौत मैं कबूल नहीं, मैं झूठ भी बोल रहा बोले है। और मैं अर्ज करा, सारी जिंदगी का अध्ययन करो, मुताला करो, थानू मर्यादा किधरे नहीं मिलेगी। जो जो मैं जोड़ छली चंद्रावल कान किशन जादम भया, पार जात गोपी ले आया बिंदरा बन में रंग गया। हुण जिस तरह के ढंग नाल छल के चंद्रावल नू लैंदा गया चचेरी भैण सी राधा दी, और उत्थों मर्यादा नू सामने रखी, ये कम भुल के भी राम नहीं कर सकते, कृष्ण कर सकता, राम नहीं कर सकता। सुभद्रा हरण जिस ढंग नाल मदद की थी कृष्ण ने, सुभद्रा दे हरण देच ये राम नहीं कर सकते। ते जब श्री कृष्ण ते कोई उंगल उठांदा सी, कहण लगे सब कुछ लीला है, अगर हिरदा शुद्ध है तो जो कुछ भी है सब शुद्ध है, अगर हिरदा अशुद्ध है तो जो कुछ भी है फिर वो अशुद्ध है। ये एक गाथा है, मुख्तसर वो भी मैं कह दिया तो फिर मैं अगे चला। कहते ने सखियां श्री कृष्ण दिया जमुना तो पार जाके दुर्भाषा ऋषि नूं भोजन कराना चाहदियां सन, पर जमुना उस दिन चढ़ी हुई बड़ी जोर दी, पार जाना बड़ा औखा। वह जमाना जब पुल नहीं आते सन, लोग तैर के पार करते सन, उंज लंघ के पार करते सन या नौका, ते चढ़ी हुई इतनी जमुना ना नौका चल सके ते ना उंज लंघ के बंदा पार कर सकता सी। ते गईयां श्री कृष्ण जी पास, भई दुर्भाषा ऋषि नूं भोजन जरूर छकाना, ते की करिए। ते सारियां सखियां कोल भोजन दे परोसे थाल, श्री कृष्ण कहन लगे जाके जमुना दे अगों फरियाद करो, हे जमुना जे दुर्भाषा ऋषि निराहारी है, जे कृष्ण जती है, ते तू सानू रस्ता दे दे। गाथा है कि मैं जमुना ने रस्ता दे दिता, ते सारी सखियां कोल जिहड़े थाल सन ना भोजन दे, दुर्भाषा सारे ही खा गया। हैरान हो गया, इतना खा के ये निराहारी है। ते सौ सौ सखियां पत्नियां, कहने 16,000 पटनानियां सन श्री कृष्ण दी, असि ते एवें मुहम्मद साहब ते इल्जाम लाने उहदियां 10 पत्नियां सन श्री कृष्ण दियां 16,000 पटनानियां ने। मेरे ख्याल सारी मथुरा उन्हां दियां पटनानियां ही सन, इंज लगता है भरिया पे असी मथुरा। हकीकत है, यह ते गाथा है, पुराणक गाथावां ने। ते मैं एक एक अखर थानू पढ़ के सुना रहा, अपनी तरफ एक शब्द भी जोड़ नहीं रहा। 16,000 ਪਟਰਾਣੀਆਂ। ਵੀ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਸਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਦੁਰਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਤੇ 16 ਥਲ ਭੋਜਨ ਦੇ ਛੱਕ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪਟਰਾਣੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਿਰਾਹਾਰੀ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਇਆ ਜਾਏ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭੋਜਤੀ। ਉਹ ਨਿਰੀਛਿਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਿਰੀਛਿਤ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ। ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਨਿਰਾਹਾਰੀ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਚ ਆਈ ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਏ, ਨੱਚੋ ਟੱਪੋ, ਮੰਦਰ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਮੰਦਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਦਰ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਈ ਇੱਥੇ ਨਗਨ ਬੀਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਨਗਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੰਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰਨਾਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਖਜੁਰਾਹੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਫਤ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਹੈ ਹਰੀ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹਰੀ ਮੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨਾ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ ਆਖੋ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਰੀ ਮੰਦਰ। ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਨਿਰਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ, ਸਵਰਨ ਮੰਦਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਹਰੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਗੁਆਲ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਵੀ ਗੁਆਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਗੁਆਲ ਕਵੀ ਨੇ ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਛੰਦ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਸੁਰ ਊਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੁਰ ਰਾਜੇ ਸਦਾ, ਸੁਦਾ ਊਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਾਂ ਸੁਦਾ ਸਰ ਦਰਸ ਹੈ। ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੈਕੁੰਠ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਚ ਦੇਵਤੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਸੁਰ ਊਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਾਂ ਸਾਧੂ ਸੁਰ ਰਾਜੇ ਸਦਾ, ਸੁਧਾ ਊਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਾਂ ਸੁਧਾ ਸਰ ਦਰਸ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਭ ਹੈ, ਗੁਆਲ ਕਹਿਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੁੰਭ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਧਾ ਊਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਾਂ ਸੁਧਾ ਸਰ ਦਰਸ ਹੈ, पान किए वांके होत अमर सो मरुं के जीवन मुकत ये सबको बरस है। उजड़ा बैकुंठ रेच अमृत है ते कुंभ रेच जिड़ा पी लवे तो मरदा नहीं, पर ए अमृत जो छक लवे मरण का भय नहीं रहता, जीवन मुकत हो जाता है। जीवन मुकत ये सबको बरस है। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो अमृत जिड़ा देवत्यां दा है, सिर्फ योगियां लईए त्यागियां लईए। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो, योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष है, ते योगियां लई भी है भोगियां लई। ग्वाल कवि योगिन को दुर्लभ कहा है वो, योगी भोगी दोवन को होत इहां हर्ष है, उहां हरि मंदिर इया हरि गुरु मंदिर या ते गुरपुर सुरपुर ते सरस है। कवि ग्वाल कहने लगे मैनू कोई चुनन वास्ते कहे तू बैकुंठ चुनना है कि ए गुरु की नगरी नो चुनना है, तो कहिंदा है बैकुंठ दे ते सिर्फ हरि दा ही मंदिर है ना, इत्थे हरि दा भी मंदिर ते गुरु दा भी मंदिर। या ते गुरपुर सुरपुर ते सरस है, इस वास्ते देवतियां दे मंडल दे नालों गुरु की पूरी महान है। इत्थे हरि दा मंदिर है, इत्थे गुरु दा मंदिर है, इत्थे साधु बैठे ने, इत्थे ज्ञानी बैठे ने, इत्थे अमृत दा सरोवर है। कवि ग्वाल कहिंदे ने ऐ परमात्मा मैं तेरी बनाई हुई बैकुंठ तो भी जो है इस तों कुर्बान करदा, इतनी महान है, मैं इसकी चोण करदा। तो खिमा करनी देवदासियां नाल अपवित्र होए हिंदुस्तान दे बेशतर मंदिर, नाच गाणियां दे अखाड़े बने हुए बेशतर मंदिर, पखंड ते तरह तरह दे डिंब दे बने हुए ए मंदिर। अकाली दे मंदिर सवेरे रोज संडा या बकरा कट के भेज करो ते खून नाल ताली काली नूं तिलक दिओ। मैं तीन दिन लगातार गया, पहली दफा जब कलकत्ते गया सी मंदिर देखण, तीन दिन मैं रोज गया। सवेरे कथा ते लाया मैं अपने नाल दे साथी नूं, भावें संगतां बड़ियां औखियां होईयां ते संगतां नूं बाद विच पता चले इत्थे काली दे मंदिर नस जांदा सवेरे सवेरे, ते मैं अपने ढंग नाल चला जावां। शिकंजा उन्होंने एक बनाया होया मूर्ति दे सामने, ते शिकंजे च पुन्ने वाले दिन ते संडे नूं कहिंदे ने संडा कटदे ने रोज बकरा कटदे, ते उत्थे ओह खड़े होके जो मंत्र मंत्र पढ़दे सन ते जो सारी पूजा प्रतिष्ठा करदे सन, मैं ओह देखण दो तीन दिन लगातार गया। जैसे शिकंजे च पाके बकरे नूं वढदे ने, फिर ओह खून दे तिलक जिहड़े जिन्ने यात्रू आए हुंदे ने दर्शनार्थी उन्हां दे मत्थिआं ते लांदे ने, अंदर मूर्तियां नूं लांदे ने, फिर उस बकरे का है मांस उसे मंदिर विच प्रसाद के रूप में तोल तोल के मुल दिता जाता है। प्रसाद है, प्रसाद मुल दिता जाएगा। तो मैं तीन दिन लगातार देख के ना तो क्या करने उन्हें सोच लिया कि मेरे ये बड़े श्रद्धालु ने बड़े भगत ने, तीन दिन दे आ रहे हैं काफी देर दे इतने बैठे रहेंगे। तो मैं कह लगे सरदार जी आपका इस मंदिर के संबंध में क्या भाव है। मैंने कहा बहुत अच्छा बूचड़खाना है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसा और कहीं नहीं है, मैंने कहीं नहीं देखा, बहुत अच्छा पावन पवित्र ढंग से ये बूचड़खाना बनाया गया है। इसको मंदिर कौन कहेगा, यहां ना भजन ना बंदगी, खून के तिलक लगाए जाते हैं और यही खून का प्रसाद बांटा जाता है, और क्या है यहां। हकीकत है भैरो है उन्होंने शराब पिलाओ, भैरो दे मंदिर कहने ने यह बर्फ ही नहीं खाता, कड़ा प्रसाद है तो शराब पींदा, पेट करो शराब। पुजारियां ने आप शराब पीनी सी भैरो नूं अगे कीता, पुजारियां ने आप संडे खाने सन काली नूं अगे कीता, हकीकत इतनी। पुजारियां ने आप नाच वेखना सी तो कृष्ण की रास नूं अगे कीता, ते पुजारियां ने आप भ्रष्ट होना सी क्षमा करनी कृष्ण नूं अगे कीता, ते इंज मंदिर भ्रष्ट हो गए सारे दे सारे, निजाम भ्रष्ट होया और पुजारी तबके तो होया। उनते गुरु घर देच ग्रंथी सिंह कहंदे ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की पूजा प्रतिष्ठा करन वाले नो, पर किसे वक्त एक दरबार साहब देच हरिमंदर साहब की जो पूजा करते सन उन्हां नू ग्रंथी सिंह नहीं कहंदे सन, पुजारी कहंदे सन। कुछ समा ए रौरी ती रही है पुजारी। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दर्शन करना है, गुरु तेग बहादुर साहब ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈਣੀ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਆਪ ਮਾਲਕ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕੱਢੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲੇ, ਔਖੇ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ। ਪੰਕਤੀ ਇੰਜ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀ ਅੰਦਰ ਸੜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਤਬਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਤਬਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸਰੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਾਇਆ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰ ਵੀ ਦੇ ਗਏ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮਸੰਦ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਸੰਦ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਸਰੀਏ। ਆਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਬੋਲ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਤਨੀ ਵਿਗਾੜੀ, ਰਾਸਾਂ ਰਚ ਰਚ ਕੇ, ਲੀਲਾ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਰਚ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਚ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਧਰੋ ਭੈਰੋ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੋ ਪਿਲਾਓ ਸ਼ਰਾਬ, ਕਿਧਰੇ ਕਾਲੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੋ ਅੱਗੋਂ ਸੰਡੇ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਨਿਰਤ ਗਾਇਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ। ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਲਬਨ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰੋਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਤੇ? ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਕ ਖੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਥੋੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਇਤਨੀ ਕਰੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਦੋਜ਼ਖ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸ਼ੂਦਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨਾਮ ਦੇ ਜੀਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਡੋਰ ਗਾਰ ਸੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਇਹ ਪਾਚੋਂ ਤਾੜਨ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹਿਤਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਰਹੋ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਦਰ ਢੋਰ ਢੋਲ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੂਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਗਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਤਾੜਦੇ ਰਹੋ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਘਰ ਘਰ ਵਿਚ ਰਾਮਾਇਣ ਇਹੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਸੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਇਹ ਪਾਚੋ ਤਾੜਨ ਹਿਤਕਾਰੀ ਤੇ ਪਤੀ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪ ਹੀ ਪੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਸੀ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਇਹਦੀਆਂ ਧਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਦਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਛਣ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਣ ਲਾਵਾਰਸ ਪਿਓ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀ ਦਇਆ ਕਠੋਰਤਾ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਤਨਾ ਸੰਜਮ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੀਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਧੀ ਬਣਨਾ ਲੋਕੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਬੋਧ ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਬੁੱਧ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਕਿ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ ਹਰ ਵਕਤ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਤਰ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਬਾਨ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪੈਰ ਗਲਤ ਨਾ ਚੱਲਣ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੌਧਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮਾ
2: ਪਰ ਅਗਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਦੀਵਾ ਹੀ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਵੇ ਦੇ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਦੀਵਾ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਕੁਛ ਗਲਤ ਅਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਰਾ ਹੀ ਵਾਚ ਗਈ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾ ਸੀ ਸ਼ਮਾ ਗੌਤਮ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਫਲੇ ਅਗਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਲ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਗਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਕਲਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਮਾ ਗੌਤਮ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿਫਲੇ ਅਗਿਆਰ ਮੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਜਲ ਰਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਬੁੱਝਣ ਲੱਗੇ ਇਧਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਮਾ ਜਲਾਈ ਗੌਰਖ ਨੇ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਰਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਲੀਲਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਤੇ ਲੀਲਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਮਹਾਤਮਾ ਬੋਧ ਸਿਧਾਰਥ ਬਣ ਗਏ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗੋਰਖ ਨੇ ਜੋ ਤਰੁਟੀਆਂ ਬੋਧ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਚੁੱਕੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਖਤਸਰੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਗੋਰਖ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਚਲਾਈ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਰਿਧੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਏ ਵਰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਗੋਰਖ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ ਜਾਣ ਆਮ ਪਰਜਾ ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਕੇ, ਧਨਵਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਧਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਧਨ ਧਨਵਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣਵਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਰਬਲ ਬਲਵਾਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।

0: शरीर लो
1: तो लेने नाल मन ते नहीं धोता जाता, विचार ते शुद्ध नहीं होते। तन नु रोज धोंदा रहो, सुभाव नहीं बदलना। ऐसा भाई गुरुदास जी ने एक गल आखी, कहन लगे तुमने अमृत सिंचिए, तुम्मे दी वेल में कोई रोज मनुख अमृत सिंचदा रहे, मिठा घोल घोल पानी विच उस दे वेल दी जड़ विच पाउंदा रहे, ते की तवक्को रखदा है भी तुम्मे दी कुड़त्तन मिठास विच बदल जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच हजूर ने ख्याल दिता है, कहिंदे ने

0: तो रहेगी ना आज। मैंने उनसे कहने लगा, मैं क्यों आप बार बार जो टहल रहे हैं, तो मैं कह मेरा टहलना भी थानू खतरनाक दिखाई देता है, इन्ने डर गए हो, इन्ने सहमे हुए, इन्ने औखे। तो मैं उत्थे दिलों कहा, मैं कह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अजे भी तेरी कला वरत रही है, तेरे रूप का इतना भय है, इतना डर है, इतना खौफ है, तू अंदरों साधु बना दिता, बाहरों सिपाही बना दिता, रूप ही ऐसा बना दिता, अजे भी खौफ, अजे भी पै। और तदे ते एक एक सिंह दे पिछे सौ सौ इन्होंने जो है लाए ने अपने दस्ते काबू करन लई। खैर मैं गल लमकावा ना, तो ये जंगी तरस दे ते उचारण कीती हुई बाणी है, भ्यागड़े दी वार उचारण कीती हुई वार गुरु रामदास जी महाराज दी, वार नाल जोड़ी है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, श्लोक नाल हैगे ने गुरु अमरदास जी महाराज दे। तो इस वार दे प्रथम जो श्लोक है गुरु अमरदास जी महाराज दा, ये आप सरवण करो, सिलसिलावार अर्थ ते भाव अर्थ फिर आप जी दे सामने रखिए। एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। हाँ जी,
1: महला चौथा
0: वार सारी दी सारी महला चौथा चौथे पातशाह गुरु रामदास जी महाराज दी उचारण कीती हुई है। हाँ जी,
1: सतगुरु प्रसाद
0: ए मंगला चरण है, दो मिनट मैं ले लवा चौंके आया है। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, गुरु ग्रंथ साहब दा पहला अक्षर एक है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी एके तो शुरू होंदी है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे सारे शब्द एक दी परिक्रमा करदे ने, एक दे आले दुआले जो है घूमदे ने। वो एक की है, वो सत है, उस एक दी वजाहत करोगे तो एक की है, वो एक ओंकार है, वो एक की है ओंकार है, वो एक की है वो सत है, वो एक की है मूल मंत्र दे च, उस मंगला चरण दे च पूरे मूल मंत्र दे च सारी वजाहत कर दीती। वो जो एक है वो ओंकार है, वो जो एक है वो सत है, वो जो एक है वो नाम वाला है, हस्ती वाला है, वो जो एक है वो कृत नहीं है, करता है, और वो जो एक है वो ऐसा करता है कि अपनी कृत दे च पूरे होया है, व्यापक है, अगों फिर उसके गुण ने भय तो रहत वैर तो रहत है। ये सारी वजाहत उस एक दी, उस एक दा ही सारा विस्तार है। वो एक की है, वो एक व्यक्ति नहीं, एक ऐसी शक्ति है जो ओंकार है। तो ओंकार का मतलब है उत्पत्ति करने वाला, पालना करने वाला, नाश करने वाला, इस तीन शब्दों का जोड़ है, अकार ओकार मकार भाव ओंकार। इसकी वजाहत मैं काफी दफा थोड़े सामने कर चुके हैं, क्योंकि कई दफा मंगला चरण आ जाता है। कह ना सके को तू कद का, थित वार ना जोगी जाने, रुत मार ना कोई, जाकर तासर टीको सहजे आपे जाने सोई। साहब कहते ने सृष्टि भी अनादि, एदा भी याद नहीं लभदा कदों दी है, किसे नु की पता। ते जद कृत बारे नहीं पता ते करते बारे कौन अंदाजा लावे। अनादि सत तो मुराद सती सदी भी हमेशा, अनादि सत तो मुराद पूरन। ते हुण पूरन दे की अर्थ करोगे, पूरन दे अर्थ यही ने जिदा सिलसिला लभे ही ना, कित्थों शुरू होंदा ते कित्थे खत्म होंदा है। कोई ना जाने तेरा केता के वड़े चीरा, पूरन दा इतना ही मतलब है। पूरन अगर सीमा दे चाहे वह पूरन नहीं है, पूरन जो नाप तोल दे आ गया है वह पूरन नहीं है। पूरन ओ जिदा नहीं पता चलता कित्थों शुरू होंदा है किथे खत्म होंदा है। वो जो एक है वो ओंकार है, और जो ओंकार है वो सत है, वो जो सत है वो गुरु है। वो एक चूंकि ओंकार है, वो एक सत है, वो एक ही गुरु है। समूह जगत खंड ब्रह्मंड नो प्रेरणा देण वाला कौन, वो एक। ऐसे वास्ते कलगीधर पातशाह ने कह देता, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमार, अपरम पर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुरु मिलया सोई जी हम।

प्रथम सनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा एकाग्रता प्रदान करने अज का सोरठ राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का जो महान वाक आया है इस विच ऐसे विषय नू सतगुरां ने छोया है जो करीबन करीबन व्यापक है ते जगत की समस्या है। मनुख का कुछ लोड़ां दा जगत है, मनुख का कुछ लोभ का जगत है। ये जीवन दे ढंग दो ही ने, लोड़ां विच जीवना, लोभ विच जीवना, तीजा जीवन नहीं है। कोई जी रहा है लोड़ां की पूर्ति करने है, कोई जी रहा है लोभ की पूर्ति करने है। अक्सर 99% मनुखां दियां लोड़ां पूरियां हो जांदियां, लोभ किसे दा भी पूरा नहीं होंदा। लोभ दा सुभाव है कि पूरा होंदा ही नहीं, होंदा ही नहीं। लोभी मनुख मरदे दम तक अधूरा ही रहिंदा है, अधूरा ही रहिंदा है। जगत दे पूरन शांतमई जीवन उही जीवदे ने जो लोड़ां दे जीवे, लोभ दे नहीं। मैं फिर दोहरावां, लोड़ां पूरियां हो जांदियां ने, लोभ नहीं पूरा होंदा। लोड़ां दी पूर्ति करन दे फिर तीन साधन ने, बड़े ध्यान नाल सुनना। तीन साधन ने। पहला सिरमौर साधन किरत करने, दूजा साधन मंगना मंगता, तीजा साधन खोना लुटना। लोड़ां नूं पूरे करन दे ए तीन साधन ने। किरत करके लोड़ां दी पूर्ति करनी, मंग के लोड़ां दी पूर्ति करनी, खो के लोड़ां दी पूर्ति, और कोई साधन नहीं। जो मेहनत करके लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने किरती। जो मंग के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने मंगता, जाचक, भिखारी। और जो खो के लुट के लोड़ां दी पूर्ति करदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने चोर, लुटेरे, डकैत। संसार विच ये तिन्ने मौजूद ने। ये ठीक है, वड्डा तबका किरतियां दा है, पर मंगतियां दा तबका भी घट नहीं है, ते लुटेरियां दा तबका भी घट नहीं। लोड़ां दी पूर्ति करनी है खोक है, लोड़ां दी पूर्ति करनी है मंग के, लोड़ां दी पूर्ति करनी है किरत करके, मेहनत करके। ऐसे भी दुनिया विच अवतारां दे राहीं व्यापक नुक्ते लोड़ां दी पूर्ति लई पेश होए, उन्होंने दरम्याना रस्ता चुनिया,
मेहनत नहीं करनी, खोना भी नहीं, भिक्षु बना देते, मंगना है, भिक्षा मंगनी, मंगना है। मंग के लोड़ा की पूर्ति करनी है। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, वख वख अवतारा ने जिहड़ी उम्मत पैदा की है उन्होंने बकायदा नाम दिते ने। जैसे अहले इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने अपनी उम्मत नो मुसलमान कहा, महात्मा बुद्ध ने अपनी उम्मत जो पैदा की थी उन्हों भिक्षु कहा। गुरु नानक देव जी महाराज दे नाल जो उम्मत दा जन्म होया उन्हों सिख आख्या गया। सिख ने, भिक्षु ने, मुसलमान ने, सनातन मत हिंदू धर्म की शाखा एक नहीं है। यह ऐसा दरिया है जो कई धाराओं दे बगदा है। जैसे मैं देखे अमरकंटक दे, बिलासपुर मध्य भारत हुण ते खैर प्रांत होर हो गया छत्तीसगढ़, उत्थे तीर्थ है अमरकंटक, धन गुरु नानक देव जी महाराज का इतिहासक स्थान भी है। नर्मदा अमरकंटक तो निकलती है, ते जद निकलती है उत्थे इस दियां 70 धारावां ने, 70 टुकड़े ने, छोटे छोटे अगों जाके इकट्ठे हो जाते, दरिया की शक्ल अगे चल के बनती है, छोटिया छोटिया धारा। हिंदू धर्म की सनातन मत की धारा एक नहीं है, यह बहुत सारिया धारावां दे च बगदा है और अगे जाके कट्ठा भी नहीं आता। सन्यासी ने, बैरागी ने, ब्रह्मचारी ने, इना दे च और सन्यासियां दे कई कई रूप, बैरागियां दे कई कई रूप, ब्रह्मचारियां दियां कई कई शाखावां, फिर जितने इष्ट ने उतनिया धारावां ने। किसे दा इष्ट शिव, किसे दा श्री राम, किसे दे श्री कृष्ण, ये धारा मेल भी नहीं खांदी। एक आम मनुख दी ते गल छड्डो, देश ते जगत प्रसिद्ध भगत, लेखक, विद्वान महात्मा तुलसी जैसे मथुरा दे च आए रामायण दी कथा करन, तो हुण कुदरती गल है मथुरा नगरी श्री कृष्ण दी है, जिवें अयोध्या श्री राम दी, जिवें अमृतसर नूं असी रामदासपुरी कहिंदे आ, रामदासपुर नाम भी पहले यही सी। गुरु रामदास जी की नगरी है, अयोध्या राम की नगरी है, बनास शिवां की नगरी है, मथुरा कृष्ण की नगरी है। मथुरा विच आए महात्मा तुलसी तो ले गए श्रद्धालु इन्हां नूं कृष्ण जी दे मंदिर विच, द्वारकाधीश मंदिर विच। सारिया ने डंडौत की थी, तुलसी ने नहीं की थी, तुलसी ने नहीं की थी। पूछा गया, आप भगत हो, सिर्फ भगत ही नहीं भक्ति का संदेश देंदे हो, उपदेश देंदे हो, कथावाचक हो, सिर्फ कथावाचक ही नहीं तुसी बहुत बड़े विद्वान हो, लिखारी हो, आपने डंडौत नहीं की थी, मत्था नहीं टेकया, तो हुण जो कुछ तुलसी कहिंदे ने उन्हां दा ही बोल मैं थोड़े सामने रखा। कैसी सुंदर छब बनी भले बिराजे नाथ, बड़ी सुंदर छवि है, मूर्ति बड़ी सुंदर है, बड़ा सोहना प्रभाव पै रहा है।
ਉਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੁਰਲੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਕਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਛਬ ਬਣੀ ਭਲੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨਾਥ, ਪਰ ਤੁਲਸੀ ਮਸਤਕ ਤੌਨੇ ਵੇ ਜੋ ਧਨ ਸ਼ਬਾਨ ਹੋਏ ਹਾਥ। ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਂ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਚ ਧਨਸ਼ਦਾਨ ਹੋ, ਧਨਸ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਧਨਸ਼ਧਾਰੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੁਰਲੀ ਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਮੁਰਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿਕਸ਼ੂ। ਭਿਕਸ਼ੂ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ। ਸਿੱਖ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਉਮਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਧਾਰਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਨਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਛੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਛੇ ਨੇ। ਨਿਆਇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੌਤਮ, ਸਾਂਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਪਲ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਮਿਨੀ, ਯੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੜਾਦ, ਇਹ ਛੇ ਗੁਰੂ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ਼ ਅਨੇਕ, ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।

0: তোহর মুসলায় সারায়া খেল পহে বেগারি ন্যায় কারকায় কাম নায়া পহে অনুগ্রহ যাকাও প্রভকো তিস হৃদয় নাম বসায়া সাধ সঙ্গত কা পাছা পরেও জানো নানক হর রস পায়া পায়ো অনুগ্রহ যাকাও প্রভকো তিস হৃদয় নাম বসায়া সাধ সঙ্গত কা পাছা পরেও জান নানক হর রস পায়া ওয়াহিগুরু জি কা খালসা ওয়াহিগুরু জি কি ফতেহ।
1: গুরু রূপ সিং জি সনেমর ফতে কবুল করনে ওয়াহিগুরু জি কা খালসা पावन पवित्र वाक राग टोडी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का मूल जिहड़ा इस विशा प्रकरण चल रहा है जीवन के लक्ष्य नू समझे बिना जीवन बतीत करना व्यर्थ है। जीवन का लक्ष्य की है, क्यों जी रहे हैं, जीवन क्यों है, बगौर मुतल करेंगे। किसी ने जीवन का लक्ष्य खाना पीना ही रखे है, ये एक साधन से लक्ष्य नहीं से। किसी के जीवन का लक्ष्य परिवार है, धन संपदा है, इस तो अगे अज तक मनुख दिया निगाहां नहीं गई, इतें ही रुकिया जाए, इतें ही रुकिया। तो साहब कहने ये लक्ष्य नहीं है, जीवन का यह लक्ष्य नहीं है, जीवन का यह निशाना नहीं है, जीवन का यह घर नहीं है। जिहड़े जिहड़े लक्ष्य बनाए ने यह तो साधन ने, साधन लक्ष्य समझ ले तो कुदरती गल है, जब साधन ही लक्ष्य हो गया फिर लक्ष्य तो असल दे भुल जाएगा, भुल जाएगा। तो लक्ष्य नहीं आया, लक्ष्य भुलिया होया, इसे वास्ते अवतारी पुरुष कहते ने याद करो किसनो लक्ष्य नो। लक्ष्य की है परमात्मा, लक्ष्य की है ईश्वर, ये भुलिया होया। करीबन करीबन सारी कायनात नो भुलिया होया, की होया कोई करोड़ों विच एक अद मनुख नो लक्ष्य का पता, लक्ष्य की समझ है, बाकियों नहीं है। जिस जिसनों भी लक्ष्य का बोध नहीं है